संवत 1948 के भाद्रपद मास की 31वीं तिथि तदनुसार 22 सितंबर सन 2026 हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन में किसी भी समय सुन सकते हैं। इस समय थोड़ी ही देर में 6 बजने को हो जाएंगे और थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

0: और तेलुगु फिल्म कल्की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

चिंतन। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि निष्काम कर्म, दया और सात्विक भाव से किए गए कर्म, विशेषकर विद्यादान और अन्नदान, यदि निष्काम भाव से किए जाएं, तो वे ईश्वर प्राप्ति में सहायक।

सहायक होते हैं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। और अब झरोखा के अंतर्गत हम आपको आज बताएंगे दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

इस झरोका के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस लंका कांड का भाग 319वां। संगीत सरता सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 7। कलाकार गायक पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली।

सात बजे भूले बिसे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम है राही प्यार के, 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर और दोपहर 2 बजे त्रिवेणी आलेख और स्वर मंजरी वर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आठ बजकर 30 मिनट पर चित्रलोक, सुबह 9:30 पर और रात्रि इसी समय पर सुने आज के फनकार जो केंद्रित है अभिनेत्री दुर्गा खोटे पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुने डॉक्टर अजीत मिश्र न्यूरोलॉजिस्ट से ममता सिंह की बातचीत, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सुने सखी सहेली, 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेलुलाइट के सितारे, अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित, 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर तराने नए पुराने का शेष भाग, 6:30 पर झरोखा, 6:45 पर संध्या रंजन, 7 बजे जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष पॉप एक्सप्रेस, रात 8 बजे हवा महल में प्रहसन इंटरनेशनल प्रॉब्लम बेजारी, लेखन अजय भारती, निर्देशक मुख्तार अहमद। 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या।

ये थे दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस लंका कांड का भाग 319वां, आज आप सुनेंगे।

राक्षस सेना में ऐसी उथल पुथल मचा दी मानो दो मंदराचल समुद्र मंथन कर रहे हों। दिन का अंत हुआ। अनेक असुरों का संहार करके अंगद और हनुमान श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उनके युद्ध भूमि से हट जाने के बाद राक्षस एक बार फिर वानर सेना पर टूट पड़े। आसुरी माया से राख, पत्थर और रक्त की वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छाया देख वानर सेना में खलबली मच गई। श्री राम से ये रहस्य छिपा न रहा, उन्होंने अग्निवाण चलाकर चहुं ओर प्रकाश फैला दिया।

ख्याल और तराने की विशेषताएं। जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि इन दिनों संगीत सरिता कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत की इन दो शैलियों पर संगीत श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। अब तक

0: आप ख्याल के विषय में सुन रहे थे, आज से तराने को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। प्रस्तुत श्रृंखला के अंतर्गत राग मेघ में ख्याल की बंदिश और तराने पर सोदाहरण जानकारी दी है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। कभी कभार क्या होता है कि ख्याल की रचना और उसके भावों का राग से कोई मेलजोल नहीं होता। इस दशा में बंदिश और राग में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इसलिए गायक व रचनाकार को गहरा अनुभव होना चाहिए। तो सुनिए राग मेघ में मेरी स्वरचित यह बंदिश, जिसमें राग और प्रकृति का तादात्म्य और साम्य है।

वैसे तराना का शौक मुझे शुरू से रहा है। तराना भी गायकी का महत्वपूर्ण अंग है। इस बारे में हम आगे विश्लेषण करेंगे। राग मेघ का तराना गालिबन आमिर खान साहब द्वारा कंपोज किया गया है, जिसे मैं आपके सामने एक ताल में गाकर प्रस्तुत कर रहा हूं।

राग मेघ में तराने के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप जानते ही हैं कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की।

विशेषताएं आज आपने इसकी सातवीं कड़ी सुनी। सोदाहरण प्रस्तुति प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज की थी। इनके साथ हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर ने संगति की और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने साथ दिया। कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए ख्याल और तराने के विशेषताएं शीर्षक श्रृंखला का आठवां भाग। विविध भारत

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी।
2: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी, हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत से।

0: अभी आपने सुना बरखा फिल्म का गीत, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, गीत के बोल कैफी आजमी, धुन बनाई हेमंत कुमार ने। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये गाना।

0: अभी आपने सुना प्रतिभा वल्लभ फिल्म का गाना, स्वर दिया अमीर बाई ने, गीतकार पंडित सुदर्शन, संगीत दिया रफी गजनवी और सरस्वती देवी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली पहली,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना था दीवानी हूँ फिल्म, दीवानी हूँ गाना फिल्म अमर ज्योति का, आवाज़ें लता मंगेशकर के, गीतकार भरत व्यास, संगीत दिया वसंत देसाई ने। और आइए अब सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अभी आपने सुना सिंगार फिल्म का गाना आवाज सुरैया के, गीतकार डी एन महदोक, संगीतकार खुर्शीद अनवर।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना अनजान फिल्म का गाना, स्वर दिया हेमंत कुमार ने, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

अभी आपने सुना सीआईडी फिल्म का गाना, आवाज़ गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और धुन बनाई ओपी नैयर ने। इसी के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये गाना।

फिल्म सीआईडी का ये गीत आपने सुना, आवाजें आशा भोसले, महेंद्र कपूर, कमल बारोट की और गीतकार अजीज कश्मीरी, संगीतकार ओपी नैयर। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में सुनिए अगला गाना।

0: हम तो तेरे आशिक हैं, ये गाना फिल्म फर्ज का आपने सुना। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत रचना आनंद बख्शी, संगीत बद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं एक अंतराल के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं अगला गाना।

हमराज फिल्म का ये गीत आपने सुना गायक महेंद्र कपूर आशा भोसले, गीत रचना साहिर लुधियानवी की और संगीतकार रवि।

0: पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे।
1: हरे कांच की चूड़िया, इस फिल्म का गीत आपने सुना आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जय किशन। इसी के साथ हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही देर में समाचार होंगे, 8 बजने में कुछ ही समय है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग

0: भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
4: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए पीएलआई योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
5: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के 4 देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य

0: ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
2: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
3: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेकडाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
2: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की है।
4: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करे।
2: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
5: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेशवासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय

0: नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान, न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है छत पर मुफ्त सोलर पैनल 1,56,000 तक की सब्सिडी, सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आज की त्रिवेणी अजनबी शब्द पर आधारित है। हम, आप या कोई भी हो, जब पहली बार मिलते हैं तो अजनबी ही होते हैं। कुछ बातें होती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मुलाकातें होती हैं, तो अजनबी काफी हद तक नहीं रहते। लेकिन किसी सफर पर निकले हों, अचानक मुसीबतों से घिर जाएं, तो ऐसे में कोई अजनबी सा शख्स आकर मदद कर जाए और बिना कुछ कहे वो चला जाए, तो आंखें तलाशती हैं उस अजनबी को, कौन था, कहां से आया था। इतनी हड़बड़ी में नाम भी नहीं पूछ पाई, तब दिल को बड़ा अफसोस होता है। रह रहकर वो अजनबी अक्सर स्मृतियों में उभर आता है।

जिनसे हमारा रिश्ता नहीं होता, फिर भी वे दिल के बहुत करीब लगने लगते हैं। ना नाम का बंधन, ना पहचान का दावा, बस एक अनकहा अपनापन। कई बार ये अजनबी अपनों से ज्यादा हमारे दर्द को समझ लेते हैं। पहली बार मिले, पहली बातचीत, पहली मुस्कान, और फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत सा बन जाता है। जब हमारे अपने हमारे लिए समय नहीं निकाल पाते, वहीं वो एक अजनबी हमारी आंखों का दर्द पढ़ लेता है, हमारी खामोशी महसूस कर लेता है। तब महसूस होता है इंसानियत अभी भी जिंदा है। वही कुछ अजनबी ऐसे भी होते हैं जो जीवन में एक अधूरी कहानी बनकर रह जाते हैं।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आपके साथ आज मैं हूँ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गणेश वंदना के साथ, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने। प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा है। श्रेयस पुराणिक और जैकी वंजारी का संगीत।

इस गणेश आरती के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत पुष्पा द राइज पार्ट वन से। इस गीत को गाया है जावेद अली ने, रकीब आलम ने इसे लिखा है, देवी श्री प्रसाद का संगीत।

हम दो हमारे दो इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं जुबीन नौटियाल, दिव्या कुमार और सचिन जिगर की आवाजों में। शैली ने इसे लिखा है, धुन बनाई है सचिन जिगर ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आज जल विश्व दिवस है। शरद विश्व वो समय है जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ये शरद ऋतु के आगमन का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में इसके बाद दिन धीरे धीरे छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। प्रकृति में मौसम के बदलाव की सुंदर छटा दिखाई देने लगती है। पेड़ों की पत्तियां हरे से पीले, नारंगी और लाल रंग में बदलने लगती हैं। वातावरण में हल्की ठंडक और सुहावनापन महसूस होने लगता है। शरद ऋतु को संतुलन, परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं विक्रम वेधा, इस फिल्म का गीत जिसे गाया है विशाल शेखर और शेखर राव जियानी ने। मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा है, धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: थैंक गॉड, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं योहानी जुबिन नौटियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाजों में, रश्मि विराग, डुलन आर्क्स और मेलोडी ने इसे लिखा है, संगीत है तनिष्क बागची और चमत संगीत का।

लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और प्रीतम का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं जुग जुग जियो इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने। ये पारंपरिक रचना है जिसे संगीत से सजाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्यमेव जयते 2 इस फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दी हैं जहरा एस खान और जस मानक ने। तनिष्क बागची और जस मानक का गीत संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: गुरु रंधावा और जहरा एस खान के स्वरों में सुनिए डांस मेरी रानी फिल्म का गीत। रश्मि विराग के बोल हैं और सुरों में ढाला है तनिष्क बागची ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी, इस फिल्म का गीत जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तनिष्क बागची और आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है तनिष्क बागची और विजू शाह का।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं RRR। इस फिल्म का गीत विशाल मिश्रा और राहुल सिपलुंज की आवाज में, रिया मुखर्जी ने इसे लिखा है, MM क्रीम का संगीत।

0: गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन, भारत का नंबर वन मनोरंजन रेडियो चैनल विविध भारती। थोड़ी ही देर में सुनिए आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। दोस्तों, एक जमाना था जब फिल्मों में काम करना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, पर कुछ ऐसी दिग्गज कलाकार आईं जिन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए महिलाओं के दरवाजे खोले। वो लगातार फिल्मों में काम करती रहीं, उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया और फिल्मों में महिलाओं की एक पक्की जगह पुख्ता की। ऐसी ही एक बेमिसाल कलाकार पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम, और वो हैं दुर्गा खोटे।
1: कौन है वो?
2: कौन?
1: अस बड़े आदम जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घूंट दी जाती थी।
2: अदब से बात करो सलीम।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
1: वो कौन सा फर्ज है जो मोहब्बत को भी सीने में कुचल सकता है?
2: महाबली का हुक्म तुम्हारा फर्ज है।
1: ये फर्ज तो नहीं।

0: शहंशाह के महल में पैदा होने की सजा जरूर है।
1: लेकिन हमारी बख्शी हुई ये अजीम शान सजा तुझे भगत नहीं होगी।
0: तो फिर मासूम अनारकली को भी कैद करने के बजाय यही अजीम शान सजा दीजिए।
1: हमारे फैसलों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं।
0: लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैदखाने की ये रात अनारकली पर नहीं अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी।
2: दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 को मुंबई में हुआ था। दरअसल दुर्गा खोटे ने फिल्मों में आने का फैसला मजबूरी में लिया था। आपको बता दें कि 18 साल की उम्र में दुर्गा खोटे की शादी एक रईस खानदान में कर दी गई थी। उनके पति थे विश्वनाथ खोटे। दुर्गा खोटे के दो पुत्र हुए और फिर ये हुआ कि जब वो 20 बरस की हुई तब उनके पति का अचानक निधन हो गया। दुर्गा खोटे के परिवार में जैसे तहलका मच गया। वो अपने ससुराल में अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी, पर समय के साथ उन्होंने ये अनुभव किया कि अब जिंदगी में कुछ न कुछ काम करने की जरूरत है, तभी परिवार चलाया जा सकेगा। चूंकि वो पढ़ी लिखी थी इसलिए उन्होंने पहले तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। संघर्ष के दिन थे। उन्हीं दिनों में उन्हें एक ऑफर मिला। यह ऑफर था फिल्म फरेबी जाल में काम करने का, और बस दुर्गा खोटे की यात्रा यहां से शुरू हो गई।

0: दरअसल दुर्गा खोटे ने अपने संघर्ष के दिनों में मजबूरी में फिल्मों में काम करना शुरू किया था। पहली फिल्म में दुर्गा खोटे का बहुत थोड़ा सा रोल था, पर वी शांताराम ने दुर्गा खोटे को मनाया, उन्हें समझाया और इस तरह से दुर्गा खोटे ने अयोध्या चार राजा की हिंदी और मराठी दोनों संस्करणों में काम किया। फिल्म रिलीज हुई, लोगों को दुर्गा खोटे का काम अच्छा लगा।
1: फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था। वो टॉकी के शुरू शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये।
2: अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे, आशा है आप भी गाती होंगी जरूर।
1: हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने विराज खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल
2: जी,
1: और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे। प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस वक्त, और आर्टिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली। मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले, कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजिडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ बिल्कुल ऐसे जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चन्नो की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था, हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ेलू नहीं मैं आपको
2: उसमें झगड़ेलू सास का था।
1: ओफो, बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कहने लगी, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आपके लड़के से शादी नहीं करती।
0: चारों तरफ दुर्गा खोटे की तारीफ होने लगी और रातों रात वो एक मशहूर सितारा बन गई। इसके बाद प्रभात फिल्म्स ने ही दुर्गा खोटे को अपनी अगली फिल्म में काम दिया जिसका नाम था माया मच्छिंद्र। दुर्गा खोटे ने हिंदी, मराठी और बांग्ला फिल्मों में काम किया। दुर्गा खोटे की सबसे यादगार भूमिका फिल्म मुगले आजम में मानी जाती है।
3: मैं आ गया।
4: सही, इतने बड़े हो गए, बड़े सुरमा हो गए हो तुम। कितनी बेदर्दी से मेरा खून मिट्टी में मिला के रहे हो। यूं सोचा माँ के हृदय पर इन जख्मों को देखकर क्या बीतेगी। कभी रणभूमि से माँ को आवाज देकर देखते, तलवारों के छनकारों से लोरियां गूंजने लगती। सलीम, मेरी जान, बाहर हटाने से मेरी नजर लग जाएगी।

अपने 50 साल के करियर में दुर्गा खोटे ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया है। वो हिंदी और मराठी की फिल्मों में तो लगातार काम करती रहीं। उनकी चर्चित फिल्मों में से कुछ हैं मुसाफिर, राज तिलक, मिर्जा गालिब, मुगले आजम, लव इन शिमला, अनुपमा, दादी माँ, फिल्म आनंद और बावर्ची में भी वो नजर आती हैं, फिल्म बॉबी और नमक हराम में भी, सुभाष घई की फिल्म कर्ज में भी उन्होंने काम किया था। वैसे आपको ये बता दें कि दुर्गा खोटे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से भी जुड़ी रहीं और बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर और के ए अब्बास जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया।

0: मुझे गाने का शौक था ही, और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा।
1: अच्छा, विदेश भी गई हूँ?
0: हाँ, मैं 2-3 दफ़े विलायत गई थी, यूरोप गई थी, और जगह भी हुआई, और हर जगह से कुछ ना कुछ नायाब चीज़ इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज़्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफ़ी समय भी इसमें डाला।
2: शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के मराठी संस्करण में काम किया था और लेडी मैकबेथ की

0: भूमिका निभाई थी। इस संस्करण में नाटक का नाम था राजमुकुट। आगे चलकर दुर्गा खोटे ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई और कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। वैसे दूरदर्शन पर आने वाला मशहूर सीरियल वागले की दुनिया तो आपने देखा ही होगा। इस धारावाहिक का प्रोडक्शन दुर्गा खोटे की कंपनी ने ही किया था। सन 1968 में दुर्गा खोटे को पद्मश्री से और सन 1984 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म साहिब बहादुर सन 1977 में आई थी। इस फिल्म में भी दुर्गा खोटे नजर आई थीं। गुलजार की फिल्म खुशबू सन 1975, इस फिल्म में दुर्गा वृंदावन की माँ की भूमिका में थीं। 1974 में दुर्गा खोटे ने फिल्म बिदाई में पार्वती का किरदार निभाया और इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: कृष्णा कृष्णा।

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान याद है, दुर्गा खोटे ने दुर्गा मौसी का किरदार निभाया था। आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उन फिल्मों के गाने जिनमें दुर्गा खोटे ने अभिनय किया था, जैसे एक फूल दो माली सन 1969, संघर्ष सन 1968, अनुपमा सन 1966। सितंबर 1991 को 86 बरस की उम्र में दुर्गा खोटे इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। रह गईं उनकी निभाई कुछ भूमिकाएं और उनकी हंसमुख पर्सनैलिटी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री दुर्गा खोटे पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी आवाज इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुंचेगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
2: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है मतलब किसी भी बीमारी को कैसे रोका जाए उस बारे में बात करूं, ये सोचा था। बट सोचा था 60-70 की उम्र में इसके बारे में लोगों से बात करूंगा।
1: अच्छा,
2: तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, सबसे पहले उसके लिए विविध भारती को धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: धन्यवाद आपको कि आप आए। और आपने कहा कि बहुत उम्र के बाद आपको मौका मिलता, लेकिन दरअसल ये दौर बदल रहा है, तकनीक का जमाना है और मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और बीमारियों ने भी खूब प्रगति की है। बीमारियां नए नए रूप में नए नए नाम के साथ हाजिर हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि मरीज क्या करें, कैसे करें, कब करें। अभी डॉक्टर अजीत, इन दिनों एक बड़ी बीमारी है लेकिन कॉमन हो गई है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। जिसको सुनो तो पता चला कि हम फलाना हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और क्यों बढ़ रहा है?
2: तो दो चीजें, एक तो बीमारी है क्या और दूसरा जो हम सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्चुअली सही भी है। ब्रेन स्ट्रोक, अगर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूं ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक है। एक होता है जिसमें उम्र के हिसाब से जितना ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए तो अगर वो ब्लड नहीं पहुंच पाए तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, ये एक्चुअल स्ट्रोक है। दूसरा एक होता है जिसमें इतना ज्यादा ब्लड जा रहा है ब्रेन में, खून की नस फट गई है, तो ऐसे लेमैन मतलब आम आदमी उसको भी स्ट्रोक बोलते हैं, बट मेडिकल भाषा में उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। तो उसका मुख्य कारण है बीपी बढ़ जाना, बहुत स्ट्रेस है, पहले से बीपी की दवाई चल रही थी, पेशेंट ने खाना बंद कर दिया, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन आया, बीपी बढ़ने के कारण जो नस फटी तो उसके कारण जो खून है वो अंदर ब्रेन के अंदर फट गया पूरा, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जैसा आपने सेकंड सवाल पूछा क्या इसका एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, आंसर इज यस। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मैं जब बचपन में जब डॉक्टर नहीं था तो हमारे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ मतलब पेशेंट का उम्र 60-70 वाले एज में रहेगा, बट अभी ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि 30-35-40 साल की उम्र है और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट होते जा रहे हैं। तो उसका कारण हम आगे आप देखेंगे, बट एक कितने लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होते जा रहे हैं इंडिया में, ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख पॉपुलेशन देखे किसी शहर का तो उसमें 150 से 200 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 में से एक मरीज में हमको ब्रेन स्ट्रोक दिख रहे हैं। पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख

0: में, नहीं तो 10-15, तो ऑलमोस्ट वी कैन से 10 गुना जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। तो सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअली बड़े शहरों में इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे अस्पताल ज़्यादा हो रहे हैं, सीटी स्कैन एमआरआई की सुविधा है, न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत बार बीमारी के नंबर्स उतने ही हैं बट वो डायग्नोसिस ज़्यादा होते पा रहे हैं। तो इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है। पहले काफ़ी बार स्ट्रोक हुआ, पेशेंट घर से अस्पताल पहुँच ही नहीं पाया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअल तो वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ करता था।
1: तो ये तो बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए
0: करेक्ट, अच्छी है,
1: हैं।
0: बट उसका एक्चुअल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम स्कैन कर रहे किसी और चीज के लिए और उसमें दिख गया है तो स्ट्रोक भी है इनको। फिर बाद में पूछा जाता है आपको कैसे हुआ, तो बोले हाँ हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन काफी कॉमन है, बीपी का प्रॉब्लम हुआ था बट दवाई लेना बंद कर दिए, दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है, जंक फूड बोलो खाते जा रहे हैं और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो। बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है।
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध, गुस्सा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं बिल्कुल,
0: करेक्ट करेक्ट। तो
1: तो ये सब भी कारण हो सकता है
0: वो
1: क्या
0: एक ही
1: जिसमें?
0: कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, रक्तदाब, वो कंफर्म है बढ़ता ही है उस वक्त। तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का,
1: जी
0: प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं
1: जी
0: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: जी
0: बट जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ब्रेन हेमरेज, जिसमें काफी पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते।
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: तो ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ ना कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है। जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा। जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है, अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी। पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहा है।
1: ओहो
0: अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं, तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज्यादा होती है। तो
1: जी
0: उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जब स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब
1: ठीक है।
0: रिकवरी का जो समय है वो काफी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफी ज्यादा ब्रेन को
1: ओ
0: इम्पैक्ट करता है। तो
1: जी
0: कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफी ज्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। लेफ्ट इज बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल खराब बीमारी, बट राइट इज कंपेरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
1: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश, प्रयास किया जा
0: स्ट्रोक
1: सकता है ठीक करने का?
0: यूजुअली ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है। मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन एमआरआई, ऑलमोस्ट बम्बई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो। वो क्या सोचेंगे, मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर
1: ओ
0: में मोच आ गई,
1: जी जी
0: उसके कारण
1: जी
0: मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है कि थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए, आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे एमडी फिजिशियन भी है वो भी काफी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने एमआरआई किया उसमें

0: दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस हैं। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरिफेरी में है, वहां से न्यूरो के सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते हैं। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो। तो
1: जी
0: सिर्फ खून पतला करने की दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो
1: ओके
0: इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर अजीत हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज
0: करेक्ट,
1: होते हैं,
0: बहुत
1: तो इसका क्या संबंध
0: खून
1: है?
0: अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है, तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो
1: ओ
0: जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयां, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छे हैं, काफी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है।
1: जी, तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है? मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए या
0: ये एक
1: बिल्कुल नहीं?
0: मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पालपिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन और उसको तुरंत खा लो। तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना।
1: ओहो
0: क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और
1: ओहो
0: दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है।
1: जी
0: तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन
1: जी जी
0: हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली और वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा।
1: ओके
0: तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना।
1: जी
0: द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूं। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है।
1: बिल्कुल, और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना?
0: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो
1: हाँ
0: उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हम बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि फोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूंगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले एक पता होना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए,
1: जी जी
0: उससे
1: जी
0: भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए। क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है वो
1: जी
0: एक साथ सब साफ हो जाता है।
1: जी जी
0: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं अपेंडिक्स बोलिए, हर्निया, वो ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई, और हम एक जरूरी बात आपको याद दिला रहे हैं कि यहां पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: पसंद का, अब मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव, साथिया तूने क्या किया, बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम,
1: जी,
0: वो
1: SP
0: सुनना चाहूंगा।
1: बालासुब्रमण्यम की आवाज है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना जरूरी होता है?
1: तो दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है, वो पहले 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको 1-2 महीना स्पीच फिजियोथेरेपी, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को 1-2 महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाते हैं। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज्यादा मैं बोलूंगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए परिवार
1: की? सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहे। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, 2 दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे, 3 दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफी पेशेंट मान जाते हैं, फैमिलीज काफी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज 2 अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन, दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही सही था। बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीमारी का जो आउटकम है वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाना काफी मुश्किल बोल सकता हूँ।
0: जी, और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक

0: हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए.
1: करेक्ट करेक्ट. तो वो जो एक मिथ है कि मेरे गांव में तो ऐसा हुआ था, हमने उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए. तो अब जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं. बट जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब अदर देन एलोपैथी, कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो. तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के 3-4 जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो.
0: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है. अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
1: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती दवाइयां खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्रेल, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, जबरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमजोर होते जा रही है, अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं. तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है. इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स, 2-5 साल. और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते. तो इसलिए हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयां शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए. अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू. 2000 एकदम सेफ दवाइयां रहती है. मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग किडनी लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए. अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो.
0: बिल्कुल. और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए. और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए. बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाए?
1: अब मैं सुनना चाहूंगा एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूँ.
0: जी सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना.
1: जी हाँ
0: सुनते हैं ये.

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले। एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं। आई थिंक अभी भी
0: जी
1: जो भी न्यूरो, नॉट ओनली मुंबई, आई थिंक जहां पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।
0: जी जी
1: तो उसका हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है
0: तो दवा
1: तो
0: ले लो।
1: नेट पे उसका एक इलाज भी अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो।
0: बिल्कुल।
1: तो सारे हेडेक जो है उसके लिए
0: हाँ
1: ऐसा कुछ कंपलसरी सीटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा
0: हाँ
1: नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहे हैं। काफी बार हम पेशेंट देखते हैं, कुछ बेसिक दवाइयां लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं। पेशेंट को 10 दिन दवाई दे, दर्द एकदम गायब हो गया, और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हमको देख के डाउट आता है। हमने
0: जी
1: पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ, वर्ड्स निकल नहीं पा रहे, चेहरा टेढ़ा हो रहा है। हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया
0: जी
1: या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: जी
1: अदरवाइज अभी भी ऐसा है 90 से 95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं।
0: जी
1: और दवाइयां ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े, कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयां जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं।
0: जी
1: और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज ये है कि उसका जो दवाइयों का कोर्स है वो काफी लंबा चलता है।
0: जी
1: तो काफी लोगों को कॉफी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफी दर्द ऐसे भी हैं जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है, तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
0: जी सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है, और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह
1: करेक्ट,
0: से भी होता
1: एग्जैक्टली
0: है?
1: जैसे मैंने बताया, चश्मा,
0: हाँ
1: नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन हो, जिसको हम बोलते हैं रूट कनाल
0: जी
1: करवाना
0: जी
1: है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
0: इसकी वजह से भी
1: तो
0: सिर दर्द होता है?
1: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल
0: ओ
1: वो जाना है ब्रेन पे ही। काफी
0: हाँ
1: बार लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं,
0: हाँ
1: दिक्कत
0: हाँ
1: है पेट की, पेट में
0: हाँ
1: जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है
0: जी जी
1: उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: जी
1: हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से ही आराम हो जाता है।
0: जी
1: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे ही था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक एमआरआई करा लूं। तो हमारे लिए एमआरआई करवाना एकदम आसान चीज है, मैं लिख दूं 10 मिनट में उसका एमआरआई कहीं जाके हो भी जाए।
0: जी
1: तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं हम चाहते हैं कि बिना एमआरआई के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोस कर सको,
0: जी जी
1: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, ना कि खुद से एमआरआई कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर पेशेंट उसको गूगल पे सर्च करेगा कि इससे मुझे आगे जाके ब्रेन में
0: जी
1: इन्फेक्शन हो सकता है,
0: भाप ले लो
1: तो वो थोड़ा
0: और
1: हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि जो
0: जी
1: पेशेंट गूगल से पढ़ लिख के आते हैं,
0: जी
1: दैट इज अ
0: जी
1: हाफ इंफॉर्मेशन,
0: जी और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन
1: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूं
0: गया
1: मैं।
0: है। जी

0: और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं फायदे कम,
1: करेक्ट
0: तो इसलिए
1: करेक्ट
0: सिर दर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने की बजाय
1: करेक्ट
0: डॉक्टर
1: करेक्ट
0: से
1: करेक्ट
0: संपर्क
1: करेक्ट
0: कर
1: तो
0: लें।
1: वो जो
0: और
1: 5% के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके।
0: जी
1: जैसे ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है, तो हम बोलते हैं आइए हम देखेंगे जांच
0: ओ
1: कौन सी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जांच है, तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है, उसके लिए
0: जी
1: हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
0: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि एब्सेंट माइंड होना, याददाश्त पर असर पड़ता है?
1: किस स्टेज पे आते हैं, काफी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है,
0: अच्छा।
1: तो इसका ऐसे कोई ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है, एक जो ओवरऑल आईसीएमआर जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में, तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है इसको हम अभी भी रोका जा सकता है, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो बट उनके जो चलने का पैटर्न है डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहे हैं, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो अब
0: अच्छा।
1: उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना, तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो काफी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
0: जी, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई लक्षण आपको लगता है, दिखाई देता है, तो डॉक्टर से संपर्क कर लें।
1: करेक्ट।
0: और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाए हम श्रोताओं को।
1: लापता लेडीज का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूंगा मैं, सजनी रे,
0: जी
1: बहुत ही
0: सुनते हैं,
1: फेमस सॉन्ग है वो।
0: जी सुनते हैं ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में है
1: जी
0: ये गाना।
1: करेक्ट।

0: आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है क्या?
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही
0: जी
1: अच्छी चीज़ है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफ़ी कम है। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है,
0: जी
1: ब्रेन ट्यूमर इज हार्डली 5 से 7%। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है।
0: जी
1: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। पर जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके, रेडिएशन या जिससे भी, क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम, ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है। तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी तो मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो वो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत यही है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए या देखने में प्रॉब्लम है, MRI किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे तो वो नंबर 40 से 50 हजार के आसपास है।
0: जी जी
1: फिर MRI आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि MRI के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और अचानक?
1: जैसे ब्रेन स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, नॉन स्पेसिफिक मतलब
0: वाली बीमारी।
1: करेक्ट। काफी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयां खा के चल रहा है ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे वो दर्द का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि MRI कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तो पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें, सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोलो जाके MRI कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में है, मुंबई में है, तो यहाँ तो MRI इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी tier 3 सिटी में जाइए, पेरीफेरी में, वहाँ MRI छोड़े आपको न्यूरो के पास पहुंचना ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो हर एक का MRI करना मुश्किल होता है।
0: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जिससे?
1: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप देके रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए 2 ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेज नॉन कैंसर। तो ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
0: जी तो यहाँ पर एक गाना सुन ले डॉक्टर साहब।
1: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
0: जी सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि एक तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह ही दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है। तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो एमआरआई देख के वो जानकारी लग जाती है कि कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजियोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत मेरे श्रोताओं को न पड़े तो अच्छा है।
0: बिल्कुल।
1: मेनिंजियोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। स्लो मतलब हर साल में 2 mm 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं। तो अगर मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह वो मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन। तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोज करते हैं। जब मरीज आता है और उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके। तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
0: जी, तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का देख 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी जो हम बोलते हैं, 10-15 दिन आराम कीजिए। जो भी टांके हैं सिर पे, 2 हफ्ते बाद निकाल के महीने भर में ऑलमोस्ट

0: 90% से ज़्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना खाना बाहर की लाइफ एक्टिविटी वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं, अनलेस एंड अंटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है, मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने का कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये दो तीन चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब, फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई। हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
0: एक एक
1: जरूरी?
0: लक्षण है उसका। काफी बार हमने एमआरआई किया पेशेंट को फिट्स आया था, एमआरआई करके देखे एमआरआई एकदम नॉर्मल है। तो एमआरआई करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या वो देखने के लिए,
1: जी
0: बट नॉर्मल एमआरआई है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है।
1: जी
0: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है वो
1: जी
0: कहीं कुछ हिल गया है या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ।
1: जी
0: तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का,
1: जी जी
0: तो वहां अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
1: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है,
0: करेक्ट करेक्ट
1: तो उसकी क्या लक्षण है?
0: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं
1: ट्यूमर
0: गांठ।
1: वही
0: तो
1: है
0: बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है,
1: जी।
0: जैसे बाकी शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए कुछ भी हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है, बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है।
1: जी, तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है, कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
0: एमआरआई हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है,
1: और
0: तो
1: फिर
0: उसके
1: इसका
0: हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है फिट्स नहीं आ रही है साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम
1: जी
0: उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ
0: ऐसा
1: क्या?
0: जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो एक 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन, बट ऐसे मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने
1: जी
0: पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहता है, सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं अल्कोहल नहीं लेते हैं कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है किसी को नहीं पता।
1: जी
0: जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर इसका एक काफी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लगा आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर्स इतने कम हैं फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी, तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है? किस तरह की डाइट
0: स्ट्रोक
1: जो?
0: यस स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली बहुत मीठा शुगर बढ़ते जा रहा है तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, बट ट्यूमर में समहाउ कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
1: जी, और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
0: 100% यस, जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है जिसको हम बोलते हैं मेनिन्जोमा, तो वो
1: जी
0: सब निकालना आसान कॉम्प्लिकेशन कम और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो

0: हो जाते हैं, जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है तो वहां तक पहुंचना थोड़ा सर्जिकली या हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते, तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहा वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है, तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है जो आसानी से मरीज ले सकता है।
1: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
0: तो ट्यूमर को तो ऐसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है, फिर भी स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप
1: जी
0: जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी। तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो
1: जी
0: सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े, तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डायग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि
1: जी
0: एक बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो
1: जी
0: जो
1: जी
0: आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
1: जी जी
0: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीजें नशा बंद कर दो, बहुत फायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों में कुछ भी फायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफी खराब चीज है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियां जो है सिकुड़ती जाती है, तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम कर।
1: जी, तो ये जो जंक फूड की बात कही है तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेंजी जो
0: करेक्ट
1: सुन रहे
0: करेक्ट
1: हैं और
0: करेक्ट
1: नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए
0: करेक्ट
1: बहुत फायदेमंद बात है ये।
0: करेक्ट तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट
1: जी
0: सारे छोटे सिटी में भी काफी सस्ते में मिल जाते हैं,
1: जी
0: बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया, और दिक्कत है कि उनका इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या
1: जी
0: ही
1: जी
0: होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से ही होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है। तो
0: तो
1: इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए,
0: तो
1: जरा
0: हर
1: बताइए।
0: पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है, तो
1: जी
0: बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था हम भी वही दवाई खा ले क्या।
1: जी जी
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किससे हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हार्मोन्स, एंजाइम, सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग। तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं, जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय नाइट टाइम है, तो उसमें फिर अदर देन दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
1: जी
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयाँ भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
1: जी
0: तो किसी हद तक यस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन।
1: जी
0: दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग
1: जी
0: मॉडिफाई करना है, बट एक है कि ये दवाइयां इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो, और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है
1: जी। एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं

0: कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम कर रहे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता है,
1: करेक्ट, उस
0: तो ये क्या कोई न्यूरो
1: न्यूरो रिलेटेड
0: प्रॉब्लम?
1: ही है, उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60+ एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना, और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगता है। तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है, तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया, उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो
0: जी
1: उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको बोलते हैं फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन एमआरआई नहीं, हम
0: जी
1: फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसे हिलना शुरू हो, उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है, उससे एज अ डॉक्टर हमको काफी फायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर्स या पार्किंसंस तो नहीं है। तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया, और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज को डायग्नोस कर लेते हैं।
0: जी
1: बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
0: जी तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
1: चलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू। तो
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे,
2: संगीत के साधक,
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम,
2: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं

0: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना एल्बम चंदा की डोली से ये गाना, जिसे गाया सोनू निगम ने। गीत रचना नुसरत बदर की और संगीत सोनू निगम का। रंग तरंग कार्यक्रम में सुनिए अगला गाना।

मेड इन इंडिया एल्बम का ये गीत आपने सुना। आवाज़ अलीशा चिनॉय की, गीतकार अलीशा चिनॉय, बिद्दू श्याम अनुरागी और संगीत दिया बिद्दू ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अगली आवाज चंदन दास की है। इनकी गजल आप सुनिए, शायर मुराद लखनवी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला गाना।

अभी आपने सुना दिल पड़ोसी है इस एल्बम का गीत आशा भोसले की आवाज़ में, गीत गुलजार का, संगीत आर डी बर्मन का। आइए सुने अगला गाना।

अभी आपने सुना पिया बसंती एल्बम का ये गाना, आवाज़ उस्ताद सुल्तान खान की और चित्रा की, संगीत संदेश शांडिल का। और सुनिए अब ये अगला गाना।

0: अभी आपने सुना तिकोन का चौथा कोण, छाया गांगुली की आवाज, छाया गांगुली की आवाज, गीत रचना महादेवी वर्मा की, संगीत जयदेव का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही

0: smallest possible quantum of water.
1: These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
2: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4 प्लस भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषग्राद समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार, फिल्म अमीर गरीब,

0: विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है।

घटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम था कर्ज।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार।

0: उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों की महफिल, फिल्म का नाम डिस्को डांसर। अनजान के बोल बप्पी लहरी की तर्ज, पार्वती खान की आवाज।

फिर अपना फिल्म का गीत था। और अब आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है पुकार, गीत गुलशन बाबरा का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। एक पूरे दौर की याद थी इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक इबारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और आज का जो टेक्स्ट है वो पोस्ट हो चुका है। अब सभी जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर आते हैं वो सभी उस टेक्स्ट से वाकिफ हैं, पर अपने उन श्रोताओं के लिए जो रेडियो सेट पर हमें सुन रहे हैं मैं ये टेक्स्ट पढ़ देता हूं। ये दो लोगों की बातचीत है। सोशल मीडिया पर कैसे 80s का दौर लौट आया ना, सब अपनी अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। तुमने बनाई अपनी फोटो?

0: श्रोताओं के लिए जो रेडियो सेट पर हमें सुन रहे हैं, मैं ये टेक्स्ट पढ़ देता हूं। ये दो लोगों की बातचीत है। सोशल मीडिया पर कैसे 80s का दौर लौट आया ना, सब अपनी अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। तुमने बनाई अपनी फोटो? नहीं, मैंने 80s के गाने सुने।
1: अच्छा, ऐसा?
0: हाँ ऐसा। क्या सुना बताओ तो जरा। अरे सीधा सीधा बताया तो क्या बताया, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, तुम भी उसी तरह से इशारे में जवाब देना। मंजूर? हाँ चलो हो जाए। अब लड़का कहता है, हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाएंग। तुम हो बुद्धू जान लो, यू आर हैंडसम मान लो। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। अरे इस खेल में तो बड़ा मजा आ रहा है। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। वाह वाह नहले पे दहला, लगता है मेरा सहरा तैयार हो गया। ऐसा तो फूलों के शहर में हो घर अपना, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। बाग उजड़ गए खिलने से पहले, ओह इतना दर्द, हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे। ये कहां आ गए हम, कितना मजा आया ना इस खेल में। ऑफ कोर्स, तो भाई ये है आज की इबारत, और जाहिर है कि इस इबारत के जरिए आपको अंदाजा लग गया है कि गाने कौन से हैं। पर इन गानों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम 80s के दौर को, उस दौर की जिंदगी को, उस दौर के जज्बात को याद करेंगे। तो भाई अपने मोबाइल फोन पर जाइए, फेसबुक पर पहुंचिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी जल्दी ये लिखना शुरू कीजिए कि 80s के दौर में आप कहां थे, आपकी क्या उम्र थी और उस दौर से जुड़ी हुई यादें कौन कौन सी हैं आपकी। इन गानों के जरिए हम सीधे 80s के दौर में पहुंच जाएंगे और बस ये समझ लीजिए कि उन सुनहरी यादों के गलियारों में से गुजरेंगे जब जिंदगी जिंदगी होती थी, जब मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की रीलें नहीं होती थी, जब जज्बात हुआ करते थे और जब यूं कहा जाता था आई लव यू। एटीज के दौर के कौन कौन से खेल आपको याद हैं जो आप अपने दोस्तों सहेलियों के साथ खेला करते थे, और इस गाने से जुड़ी कौन सी यादें हैं आपकी।

वही कमाल का ये गाना और कमाल की 80s की यादें हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 79 में तो मेरा जन्म हुआ था, 80 के दशक में मैं बच्चा था और उसके बाद उन्होंने 90s की कुछ फिल्मों को याद किया है, अर्ली 90s की करमाना की, नाराम लखन, प्यार झुकता नहीं एक दूजे के लिए। कभी 90s की सैर भी करेंगे इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तेरे बिन मर जाना कॉलेज में तहलका मचा दिया था इस गाने ने, किसी को प्रेम का इजहार करने या छेड़ने के लिए मनपसंद गाना था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दौर में स्कूल में पढ़ रही थी, तीन खेल तब बहुत लोकप्रिय थे, कबड्डी, खो खो और छुपम छुपाई। क्या याद दिलाया, छुपम छुपाई कितने लोगों को याद है। और छुपम छुपाई में ऐसी ऐसी जगह छिप जाते थे कि कहीं मकड़ी के जाले लग जाते थे तो कहीं कुछ हो जाता था, ये भी याद कीजिएगा। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। इस बीच में एक सुंदर खबर हमारे एक श्रोता ने भेजी है और कहते हैं कि भारत की लड़कियां आज गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल आएगा। बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि भारत और श्रीलंका की लड़कियों का मैच चल रहा है, T20 मैच, पहली बार बहुत सालों बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है एशियन गेम्स में। और भारत ने 20 ओवर में 216 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और श्रीलंका 7 विकेट उड़ चुके हैं, 11वां ओवर है, केवल 54 रन है। तो कुल मिलाकर ये संभावना जताई जा रही है कि आज भारत की लड़कियां जीत जाएंगी और भारत का एशियन गेम्स में इस बार का पहला गोल्ड मेडल हमारे पास आ जाएगा। तो जश्न मनाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं क्योंकि अब बस 9 ओवर का खेल बाकी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे पहले ही ये खेल जो है ख़त्म हो जाएगा और भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत जाएंगी और जब तिरंगा लहराएगा तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ वापस लौटते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीला सफर सुनकर दोपहर की सारी थकान मिट जाती है, हम चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सिर्फ जीवन संगीत नहीं बल्कि एक एहसास है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम ओपिंगो बैटिंगो खेल खेला करते थे। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि खुददार फिल्म एक हफ्ते में 2 बार देखी थी, पहली बार 20 मिनट निकल चुकी थी इसलिए दूसरी बार फिर देखने के लिए गए थे, तब भी 20 मिनट, यानी शुरू की 20 मिनट इनकी हर बारी छूट गई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और बहुत सारे लड़के इस गाने को गुनगुनाया करते थे, रेडियो पर जब ये गाना बजता था तो बड़े चाव से सुना करते थे। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि वो कलकत्ता में थी, 27 साल की उम्र उस वक्त उनकी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 80 के दशक में नौकरी मिली थी और 80 के दशक में के अंत में शादी हो गई थी, पिछले 25 बरस उनकी उम्र थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। आज तो भाई 80 के दशक की सैर है सुरीला सफर कार्यक्रम में और जरा देखिए कि हम कहां पहुंच गए, किन यादों में। जब ये फिल्म आई थी सनी देओल और अमृता सिंह की अभिनय वाली, तो ये गाना जैसे सभी के होठों पर सज गया था। आपकी क्या यादें हैं इस दौर से जुड़ी हुई, जरा हमारे साथ बांटिए। न जाने कितने लोगों की प्रेम कहानियां परवान चढ़ी ये कहते हुए।

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि छुपन छुपाई से एक बात याद आ गई। एक बार झाड़ियों में हम छिपे हुए थे। भाई ये कमेंट्स जो है ना नीचे की तरफ भाग जाते हैं, तो नुकीली टहनी से गहरा घाव लगा जिसकी निशान आज भी कोहनी में मौजूद है, एक श्रोता ने कहा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सनी देओल की हमने अर्जुन फिल्म देखी थी और उनके प्रशंसक बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई तब घर गृहस्थी में पूरी तरह से घिर गए थे, पर धर्मेंद्र के बेटे को देखने के लिए वक्त निकालकर फिल्म देखी थी। एक और श्रोता है जिनका जन्म 80 के दशक में नहीं हुआ था, लेकिन जन्म से पहले के ये गाने पसंद आए और पसंद हैं। विविध भारती कमाल है, आपके आने से सुरीला सफर और भी सुरीला हो जाता है, ये बात इन्होंने लिखी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 12-13 साल की उम्र थी, वो मौसम के हिसाब से खेला करते थे, जैसे बारिश में कंचे और गुल्ली डंडा और बारिश का मौसम थमते ही पतंग उड़ाना, ठंड में क्रिकेट खेलना, ये ऋतुओं के हिसाब से हमारे खेल थे। कितनी सुंदर बातें, कितनी सुंदर यादें। देखिए रेडियो जो है, विविध भारती जो है, सिर्फ आपको गाने नहीं सुनाता बल्कि आपके पुराने जज्बात, आपका नॉस्टैल्जिया, आपकी जिंदगी की पुरानी यादें, कितनी सारी चीजें एक साथ हम लेकर चलते हैं। एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि 80 का दशक, 80 के गानों का दौर, हमारे लिए तो 80 सब कुछ था। बच्चन साहब, खूबसूरत गाने, रेडियो सुनने का नशा, विविध भारती रेडियो, सीलोन, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, सब कुछ, और हमारे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 80 का दशक, बड़े बड़े फ्लैश लाइट वाले कैमरों से फोटो खिंचवाना, स्टूडियो में जाकर तरह तरह के पोज के साथ फोटो खींचना और उन्हें एल्बम में चिपका कर रखना, टेप रिकॉर्डर के लिए कैसेट लाना और विशेष गानों को की लिस्ट बनाकर कैसेट्स में उन गानों को डलवाना, क्या सुंदर याद है भाई। कितने सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये याद है कि वो पूरी लिस्ट लेकर जाते थे कैसेट वाले भैया के पास कि भाई ये गाने इसी क्रम में डाल दो, और कई बार वो उल्टे पुल्टे क्रम में डाल दिया करता था। ऐसी कोई याद हो तो बांटिएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है, मजेदार याद शेयर करते हैं, लिखते हैं कि 81 की बात है जब हम हरदा से इटारसी एक दूजे के लिए फिल्म देखने के लिए 5 मित्रों के साथ पैसेंजर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। हम टिमरनी नामक स्टेशन पर पकड़े गए जो हरदा से 15 किलोमीटर दूर था। हमारे पास 2-2 रुपए थे, वो तो छीन ही लिए गए, उल्टे 15 किलोमीटर दूर हरदा पैदल जाना पड़ा। आज ऐसी यादों को याद करते हुए हंसी।

सकती है। और वो फिल्म जो है एक महीने बाद देखने को मिली थी, बड़ी ही मजेदार याद आपने शेयर की है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दशक के गानों में सिर्फ गाने नहीं बल्कि वो रस हैं, और इन गानों के बिना हमारी जिंदगी का रस अधूरा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर 80 के दशक की तस्वीरें AI के जरिए बना रहे हैं, लेकिन 80 के दशक के गीतों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर याद हमारे एक श्रोता ने शेयर की थी। वो उन्होंने कहा था कि 80 की दशक की तस्वीरें तो आप बना लेंगे, लेकिन उस दशक की सादगी कहाँ से लेकर आएंगे, वो सरलता, वो जीवन की सुगढ़ता, वो जीवन का सुकून कहाँ से लाएंगे, जब संगीत में शोर कम और सुकून ज़्यादा था, जब पुराना कोई दोस्त पीछे से कंधे पर हाथ रख देता था। ये गाने बस गाने नहीं हैं, बचपन की पहली साइकिल, पहली मोहब्बत की चिट्ठी, माँ के हाथ की चाय, वो शामें जो कभी लौट कर नहीं आएंगी, ये संगीत जो आज भी जिंदा है। क्या याद आता है 80 के दशक के नाम पर आपको, वो सुहानी यादें लिख दीजिए, बांट लीजिए आज हम सबसे, सारी दुनिया को बता दीजिए वो यादें। क्या इस गाने में इस गायक की आवाज आप जानते हैं, ये किसकी आवाज है जो नसीब इंसान का गा रहे हैं।

0: हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई।
1: क्या बात है, कितने श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं फिल्म कुर्बानी उस दशक का बेहतरीन गीत लैला में लैला और ड्रम्स की आवाज, सारा दिन इन्हीं यादों में डूबे रहेंगे। आज तो पता नहीं क्या क्या यादें याद आएंगी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे बड़े भैया को फिल्में देखने का शौक था और जिगरी दोस्त सब मिलकर स्कूल बंक करके फिल्में देखने जाया करते थे। उस सिनेमा हॉल के मैनेजर पिताजी और ताऊ जी के मित्र थे, इसलिए सारी पूल खुल जाया करती थी। आज भी भैया एक एक सीन, फिल्म का नाम और सारी चीज़ें याद करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तहलका मचा दिया था कुर्बानी फिल्म के गानों ने। इसके अलावा एक और श्रोता है जो याद कर रही हैं नाजिया हसन को, जिन्होंने कुर्बानी के गाने के जरिए धूम मचा दी थी। क्या वो ये था? और ये लिखती हैं कि इस गाने में बात बन जाए को बाप बन जाए गाकर हम सब बहुत हंसा करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत सारी चीजों को याद कर रहे हैं, इंदीवर का ये गाना। और इसके अलावा जो कैसेट रिकॉर्ड करने की बात थी उस पर तो बिल्कुल कितने सारे श्रोताओं ने अपने बात की है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में कैसेट रिकॉर्ड था, रिकॉर्डर था, सीडी से कैसेट रिकॉर्ड करते थे, कंप्यूटर में सीडी रिकॉर्डर भी था तो हम सीडी भी प्रिंट कर लिया करते थे, अपनी पसंद के गाने सीडी में तैयार कर लिया करते थे। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि कुर्बानी देखने के लिए मेरा भाई टिकट की लंबी लाइन में खड़ा रहा था और टिकट लेकर ही उसने दम लिया था। कॉलेज के दिन थे, मन उमंगों से भरा था, जीवन राग अनुराग से भरा था, 80 का दशक अब कहाँ। विविध भारती अपने गानों के माध्यम से वो दौर हमें याद दिलाता रहता है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैं और मेरे दो भाई टेप रिकॉर्डर लेकर एक दिन दिवाली के दिन गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ पटाखे की आवाज़ें सुनाई दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि कितनी गलतियां कैसेट भरने वाला कर दिया करता था, गलत गीत डाल दिया करता था, वापस जाते थे और उसके बाद उससे लड़ते थे। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने कैसेट भरने का काम किया, एक दो गीत हम अपनी तरफ से चिपका दिया करते थे जो हमें लिस्ट में नहीं मिला करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस जमाने में सिने पहली 2003 में सिने पहली नाम का कार्यक्रम याद आ गया।

हमें, इसके अलावा एक और श्रोता कैसेट भरने वाले की गड़बड़ियों को याद करते हैं। वो लिख रहे हैं कि लिख रही हैं कि भाई जब कोई लिस्ट का गाना नहीं मिलता था तो महाशय अपनी पसंद का कोई गाना चिपका दिया करते थे और पूरी प्लेलिस्ट गड़बड़ हो जाया करती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी तो हम थिएटर के बाहर सिर्फ पोस्टर देखने के लिए जमा हो जाया करते थे और देखा करते थे। कितनी सारी यादें हमारे श्रोता बांट रहे हैं। अभी जब मैं अगले गाने की तरफ बढ़ रहा हूँ उसके बाद और भी यादें कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में शामिल करें और इस कार्यक्रम के बाद तसल्ली से बैठकर इन यादों को हम पढ़ेंगे और ये भी रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और एक श्रोता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम सुन रहे हैं, 80 के दशक में स्टूडियो स्कूल ख़त्म किया था और पुणे की एक कंपनी में काम करना शुरू किया था, कुछ नए दोस्त बने थे और आज 45 साल बाद भी वो सभी दोस्त बने हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पहले लोग खेलने के लिए एक दूसरे का साथ ढूंढते थे, एक दूसरे के जज्बात की कदर किया करते थे, आज लोग एक दूसरे के जज्बात से खेला करते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई थी तो घर गृहस्थी में पूरे घिर चुके थे। इसके अलावा घर में कागज़ की चार चिट्ठियां बनाकर राजा मंत्री चोर सिपाही खेला करते थे 80 के दशक के, ये भी हमारे खेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। इस फिल्म ने कितनी धूम मचाई थी, कुमार गौरव, विजेता पंडित, क्या यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी। इस फिल्म के और कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं बताइएगा।

हासिल की है और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाइयां विविध भारती परिवार की ओर से।

क्या कमाल किया है भारत की लड़कियों ने। भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए आप यहाँ विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में भी संदेश दे सकते हैं। और देखिए, संदेशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे श्रोता, हरमनप्रीत कौर को बधाई, पूरी भारतीय टीम को बधाई। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि कुमार गौरव और विजेता पंडित पर यह गाना फिल्माया गया था और ये जोड़ी रातों रात स्टार बन गई थी। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है सनम। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये फिल्म मैं 3-4 बार देख चुकी हूं और कभी भी इस फिल्म को देखने से मन भरता नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि कम से कम 12 बार ये फिल्म देखी थी और 50 पैसे का टिकट हुआ करता था और हम जाया करते थे। एक श्रोता है जिन्होंने जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में एक लाइन है, कहाँ होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। ये लाइन बहुत पसंद है और हम सभी को इस लाइन पर अमल करना चाहिए। थिएटर में ये फिल्म नहीं देखी पर दूरदर्शन पर देखी थी। ये एक श्रोता की यादें हैं। बहुत सारे श्रोताओं की यादें। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में एक खुशी ये कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन गेम्स में, तो हम इस बात के लिए भी बहुत खुश हैं। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये आवाज जो हमारे जज्बात को जगा देती है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गाने के गीतकार कौन हैं?

आप तो ऐसे न थे, फिल्म का ये गाना निदा फाजली ने लिखा है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और सभी कह रहे हैं कि बेमिसाल शायर थे निदा फाजली। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी, मनहर उदास और हेमलता, तीन अलग अलग आवाज़ों में इस गाने के वर्जन हैं। संगीतकार उषा खन्ना हैं ये भी। और इसके अलावा राज बब्बर पर फिल्म आया गया, दीपक पराशर और रंजीता, ये भी श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन लौटते नहीं हैं, वो यादों के रूप में जीवन भर के लिए दर्ज हो जाते हैं। जब 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी हुई थी ना, तो मेरी एक सहेली ने ये गीत बड़ी मधुर आवाज में गाया था और हम में से बहुत सी सहेलियाँ इस गाने को सुनकर रो पड़ी थी। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं, गोरखपुर की जुबली टॉकीज में ये फिल्म देखी थी हमने, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में पुराने गीत चित्रहार और रंगोली में देखते थे, ब्लैक एंड वाइट होने के कारण वो अच्छे नहीं लगते थे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अमजद खान के रोल की तारीफ की है एक फिल्म में। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमने अपने जीवन साथी को कुछ ऐसा ही देखा, लगा हमारी जिंदगी होगी। पूरे गीत में जो एक लाइन है, ये तो बोलो कहाँ पे होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई, ये बहुत प्यारी लगती थी। शायद ये गाना हमने सबसे ज़्यादा सुना है। इस गाने की बात हुई है। उसके अलावा बेताब फिल्म के गाने की बात एक श्रोता कर रहे हैं कि मेरा एक दोस्त इतना दीवाना हुआ था कि उसने एक पूरी कैसेट में यही गाना बार बार रिकॉर्ड कर लिया था और सारा दिन ये गाना सुना करता था। कितनी सारी यादें हमारे तमाम श्रोताओं की। लव स्टोरी में अमजद खान का एक डायलॉग है, लड़का लड़की गायब, जब वो हथखड़ी रस्सी से हीरो हीरोइन को बांधे रहते हैं और पुलिस होते हैं, ये भी याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि तेरी याद आ रही है, ये गाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद था। लव स्टोरी फिल्म और क्रांति एक ही दिन देखी थी जब हम शादी की शॉपिंग के लिए जयपुर आए थे, ये हमारी एक और श्रोता की याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ, बल्कि दो गाने एक ही हीरो के। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि 80 के दौर का बचपन कितना प्यारा था, ना मोबाइल ना वीडियो गेम, फिर भी खेलने के लिए शाम छोटी पड़ जाती थी। गली में लुका छिपी, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे, रस्सी कूदना और कभी कागज की नाव बनाकर बारिश में बहा देना। हारने पर थोड़ी नाराजगी, जीतने पर शोर, कहा गया वो दौर।

भाई क्या शानदार गाना। मैंने कहा कि बैक टू बैक एक ही हीरो के गाने बजने वाले हैं, दो गाने। और एक श्रोता का बड़ी ही सुंदर कमेंट आया है जो बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं कि टॉकीज की साइकिल स्टैंड पर साइकिलों की भीड़ देखकर हम अंदाजा लगा लिया करते थे कि टॉकीज हाउसफुल है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि एक दूजे के लिए फिल्म मम्मी पापा के साथ देखने गए थे और हम बहुत रोए थे हम सब। और इसके अलावा फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार का बोला संवाद हम सबको याद है। ये हमारे एक श्रोता की बात है कि विजय ये मशवरा नहीं नसीहत समझना, इन लोगों की बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते में नहीं निकल जाना जहां चाहो भी तो वापस ना सको। क्या मुकाबला था शक्ति, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि टेलीविजन पर यह फिल्म देखी थी और 4 बार ये फिल्म देख चुका हूं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारे श्रोता बधाई दे रहे हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एक और श्रोता लिख रहे हैं 80 के दशक को याद करने के लिए कोई AI की जरूरत नहीं है, ये साल कैसे भूल सकता हूं, यही महीना था घर में गणेश जी की स्थापना की थी और उधर पोस्टमैन रजिस्टर्ड लेटर लेकर हाजिर हुआ था जिसमें बैंक में नियुक्ति का पत्र था और 14 अक्टूबर 1980 को मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को प्रणाम, धन्य है हमारे देश की महिलाएं जो घर और खेल और हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ।

0: भाई ये गाना भी खत्म हुआ। कितने सारे श्रोता हैं जो अलग अलग डायलॉग याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि शान फिल्म का डायलॉग, तुम तीनों मेरे खास आदमी हो, खरबंदा जी का ये अंदाज बहुत शानदार रहा था। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि खुदा गवाह इनकलाब, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, लावारिस, आखिरी रास्ता, अमिताभ बच्चन की सब फिल्में देखी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी में चल सकता हूँ, अंग्रेजी में हंस सकता हूँ, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, ये बात एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कालिया फिल्म का डायलॉग, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो नमक हलाल, लावारिस, कुली, मर्द, शहंशाह, काला पत्थर, कालिया, नसीब, शराबी, सभी फिल्मों को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्हें त्रिशूल और दीवार याद आ रही है, और दीवार याद आने पर यह होता है।
1: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोक कर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: एक श्रोता ने बहुत ही कमाल की याद शेयर की है। कहते हैं कि 80 के दशक में मैं और मेरे मामा के बेटे लव स्टोरी देखने गए, जो हाउसफुल चल रही थी। अजमेर के एक थिएटर में इंटरवल के समय खड़े हो गए, जो बिजनेसमैन दर्शक व्यस्तता के कारण इंटरवल के पहले आधी फिल्म देखकर लौट रहे थे उनसे

0: टिकट लेकर आधी ही फिल्म हमने देख ली थी, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की हमने कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन कमेंट्स के लिए। और इस कार्यक्रम में ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, क्या सनसनी थी जब सिलसिला फिल्म रिलीज हुई थी, कितना इंतजार था लोगों को, कितनी बार देखी है ये फिल्म और क्या याद है इससे जुड़ी हुई, जरा बताएं।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

और देखिए कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी मकाम पर हम आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की जोड़ी रेखा के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि भाई सबसे अच्छी जोड़ी अमिताभ बच्चन की परवीन बॉबी के साथ लगती है। किसी ने लिखा है नीतू सिंह के साथ लगती है, किसी ने लिखा है जीना तमान के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। पर अमिताभ की पसंदीदा फिल्में सिलसिला मुकद्दर का

अंदर गंगा की सौगंध और खून पसीना, ये हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करने के इंतजार में थे, लेकिन वक्त ने इजाजत ही नहीं दी और कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ आ गए। ये वो फिल्म है जिसने 80 के दशक में मचाई थी धूम। ये रेशमा का विकल स्वर कौन थे इस फिल्म के संगीतकार, ये बताइए। और इस फिल्म की हीरोइन कौन थी,

क्या बेमिसाल गाना और इस गाने की ये बांसुरी, कितने लोगों ने तो अपने मोबाइल में इसे रिंगटोन के रूप में रखा है। आज के इस कार्यक्रम का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हर कार्यक्रम को खत्म तो करना ही होता है ना अपने नियत समय पर। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया, 80 के दशक की सैर पर ले गए। जो यादें हैं उन्हें जिंदा रखिएगा, बांटते रहिएगा और अपने जीवन में जज्बात को घोले रखिएगा, क्योंकि जज्बात हैं तो हम हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, इजाजत दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आज की त्रिवेणी अजनबी शब्द पर आधारित है। हम, आप या कोई भी हो, जब पहली बार मिलते हैं तो अजनबी ही होते हैं। कुछ बातें होती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मुलाकातें होती हैं, तो अजनबी काफी हद तक नहीं रहते। लेकिन किसी सफर पर निकले हों, अचानक मुसीबतों से घिर जाएं, तो ऐसे में कोई अजनबी सा शख्स आकर मदद कर जाए और बिना कुछ कहे वो चला जाए, तो आंखें तलाशती हैं उस अजनबी को, कौन था, कहां से आया था। इतनी हड़बड़ी में नाम भी नहीं पूछ पाई, तब दिल को बड़ा अफसोस होता है। रह रह कर वो अजनबी अक्सर स्मृतियों में उभर आता है।

से हमारा रिश्ता नहीं होता, फिर भी वे दिल के बहुत करीब लगने लगते हैं। न नाम का बंधन, न पहचान का दावा, बस एक अनकहा अपनापन। कई बार ये अजनबी अपनों से ज्यादा हमारे दर्द को समझ लेते हैं। पहली बार मिले, पहली बातचीत, पहली मुस्कान, और फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत सा बन जाता है। जब हमारे अपने हमारे लिए समय नहीं निकाल पाते, वहीं वो एक अजनबी हमारी आंखों का दर्द पढ़ लेता है, हमारी खामोशी महसूस कर लेता है। तब महसूस होता है इंसानियत अभी भी जिंदा है। वही कुछ अजनबी ऐसे भी होते हैं जो जीवन में एक अधूरी कहानी बनकर रह जाते हैं।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है। उजाले उनकी यादों के उत्तम सिंह के साथ हर रविवार शाम 4 बजे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 3rd राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will

0: see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
5: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
6: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे

0: तैयारियां की जा रही हैं। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
1: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
3: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
2: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
4: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
5: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
4: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा।

0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
1: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं साहिर लुधियानवी के बोल। फिल्म का नाम है वासना।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ।

शिकार फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार राहुल देवबर्मन। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को

0: उसके ममता जी?
1: नहीं नहीं नहीं
0: मैं बता, लेना
1: कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं।
0: अच्छा?
1: लेकिन बस अब चलिए, आपने अब खुलासा कर ही दिया, राज खुल गया है, तो हम बता देते हैं सबको कि अमूमन यही होता है, हम कुछ बातें छुपाते हैं लोगों से और खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। भला खुद कहीं छुपा पाता है कोई बात? अब हम राज खोल देते हैं। दरअसल सोलो ट्रिप पर जाने की बात है, हम कई बार अकेले अकेले चले जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे अकेले जाने का प्लान बनाना मतलब ऐसे होता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और घर वाले तो जैसे बताओ कि सोलो ट्रिप पर जाने का प्लान है तो घर वाले एकदम भौचक्के रह जाते हैं, अरे
0: कैसे जाओगी,
1: कैसे जाओगी, ये परेशानी वो परेशानी, दुनिया भर की परेशानियों की फहरिस्त, और अंदर अंदर उनको कुछ घबराहट भी होती है कि अभी अकेले अकेले पैर पसार रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बगावती हो जाएगी। तो ये जो महिलाओं के साथ होता है कि सोलो ट्रिप पर जाने की बात जैसी महिलाएं करती हैं वैसे ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी सोलो ट्रिप पर जाती हैं आजकल
0: और जा रही है, और खासकर युवाओं में ये बहुत चलन हो गया है और होना चाहिए। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है जब हम अपने पति के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ या घर वालों के साथ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि हम मोबाइल में या बातचीत में लगे रहते, पर जब
1: फिक्र में लगे रहते हैं एक दूसरे के,
0: पर जब हम अकेले जाते हैं तब हम बहुत सजग हो जाते हैं, बहुत सचेत हो जाते हैं कि हमें कैसे टिकट खरीदना है, हमें कैसे ट्रेन पकड़नी है, कैसे फ्लाइट पकड़ना है, अगर बस से जाना है तो किस स्टॉप पे हमें उतरना है, इस तरह की कई कई सारी बातें हैं। अकेले जाना है तो किस तरह से हमें होटल बुक करना है, किस तरह से हमें खाने का बंदोबस्त करना है, और ये महिलाओं को बहुत अच्छा अनुभव देता है। हर महिला को ही सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। नहीं तो अमूमन हमने देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं जो रोजगार करती हैं, बाकायदा नौकरी पेशे वाली होती हैं, लेकिन वो भी जब कहीं घूमने जाती हैं तो देखा है कि पति पिता या भाइयों पर डिपेंडेंट रहती हैं, और जहां जहां गए कई बार तो घर वाले पूछते भी कि ये कौन सी जगह, तो पता चला उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता उसके बारे में, कभी खोजबीन नहीं करती। जब आप अकेले घूमने के लिए जाती हैं तो पहले तो बहुत रिसर्च करती हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह है और उन जगहों का क्या इतिहास है, और उस इतिहास के बारे में जानना, इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और एक ये अलौकिक सा अनुभव होता है।
0: इस विषय पर हम बातें करेंगे। हमारे श्रोताओं ने अभी तक कमेंट नहीं लिखा है कोई भी, तो हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि जाना चाहिए या जाना है तो किस तरह से हमें सावधानी भी बरतना चाहिए।
1: और साथ में सोना लीजिए, उन महिलाओं से भी कहेंगे कि जो सोलो ट्रिप पर जाना चाहती हैं लेकिन अब तक नहीं गई, उन पुरुषों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपनी टिप्पणी लिखे कि सोलो ट्रिप पर जाने का कैसा अनुभव रहा, अच्छा बुरा, और जो वहां पर आपने देखा क्या पाया जाना लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
0: जी, साथ ही सखी विशेष में मल्लिका श्रीनिवासन जो चेयरमैन है टैफ ट्रैक्टर की, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है ममता जी, हल्की फुल्की बातें, इसमें आंटी मत का होना, जो हर महिलाओं को इसका थोड़ा सा दुख होता है कि अपने से जब छोटी उम्र के हमें आंटी कहते हैं तब दुख होता है। अगर बच्चों ने, कॉलेज के बच्चे हैं या फिर स्कूल के बच्चे, उन्होंने कह दिया तो कुछ नहीं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं और हमसे बहुत बड़े उम्र के जो भाई साहब होते हैं वो आंटी कहते हैं तो तब तो इतना दुख होता है कि
1: कई बार लोग अपनी उम्र को छुपाने के लिए, अपने को छोटा बनाने के लिए भी सामने वाले को आंटी कह देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े हैं, और वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो ये बुरा तो लगता है। तो आपके साथ, मतलब श्रोताओं के साथ क्या हुआ?
0: और श्रोताओं ने ममता जी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं इस विषय में।
1: अच्छा, तो भाई ये वाला विषय हमें लगता है उन्हें ज्यादा मन भाया, क्या वो सोलो ट्रिप वाली बात जची नहीं या उनका अनुभव नहीं है? होगा तो अनुभव, शायद छुपा भी रहे होंगे,
0: शायद लिखेंगे।
1: हाँ, और जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो तो अक्सर सोलो ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं, परिवार के साथ नहीं,
0: उन्हें अच्छा लगता है।
1: हाँ, तो आप अपने बच्चों के अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और मुहावरों की दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है, तो आज का जो मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए, इस पर आप सबकी क्या राय है? और हमारी तो अब ये राय है कि हम सुनवाते गाना।

0: तो ममता जी, आज हम सखी विशेष में एक प्रेरणादायी महिला उद्यमी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो है महिला मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी उद्यमी है और टैफ ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और टैफ भारत की प्रमुख ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है। मल्लिका श्रीनिवासन ने विमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से गणित में स्नातक किया, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से MBA किया।
1: और उन्होंने 1980 के में अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ गई वे और जुड़ते हुए उन्होंने टैफ में काम शुरू किया। और शुरुआत में उन्हें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल करना पड़ा क्योंकि कठिन था। उन्होंने किसानों की जरूरतों को समझा, उत्पादों में सुधार करने और तकनीक और अनुसंधान पर ध्यान देने को अपनी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। और उन्हीं के नेतृत्व में ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के कारोबार का विस्तार भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने ट्रैक्टर

0: जन और ट्रांसमिशन कारोबार के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: और मल्लिका श्रीनिवासन को उद्योग और समाज में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिजनेस नेतृत्व और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। और उनकी रुचि केवल उद्योग तक सीमित नहीं है। टैफ के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी आपने काम किया।
0: मल्लिका श्रीनिवासन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कृषि जैसे पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, उसमें एक महिला का नेतृत्व, दूरदृष्टि और व्यावसायिक समझ, ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और उनकी इस मामले में बहुत अहम भूमिका रही।
1: और ममता जी, वक्त हो चुका है ब्रेक का।
0: तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो सोनाली जी, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और मल्लिका श्रीनिवासन के बारे में हमने जानकारी दी अपनी सखियों और सखाओं को। अब क्या किया जाए,
1: एक गीत सुन लिया जाए।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई आपने सोनाली जी हमसे तो पूछ लिया राज की बात कि सोलो ट्रिप पर आप कहाँ गई थी, लेकिन आपने अपना नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी सोलो ट्रिप पर पिछले
1: ममता
0: दिनों।
1: जी, मैंने पढ़ा है, सुना है और
0: हाँ
1: आपके बारे में भी पढ़ा है, पर
0: हाँ
1: मैं भी सोच रही
0: विचार
1: हूं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही
0: बस यही तो बात है, हम सब हिम्मत नहीं कर पाते हैं अकेले जाने की।
1: पर मन में
0: लेकिन
1: बहुत इच्छा है।
0: हाँ, और होता क्या है कि आप अकेले जाते हैं तो आप वहाँ के अनुभव बटोर कर ले आते हैं, वहाँ की जानकारियाँ बटोर कर ले आते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं लिखते पढ़ते हैं। और हमने तो कई राइटर्स के बारे में पढ़ा है कि जो लिखने के लिए अकेले कहीं गए, जैसे मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है
1: जी
0: आपका बंटी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि वो पहाड़ों पर गई थी वो पूरा करने के लिए उपन्यास। तो जो लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे फिल्मी
1: जी
0: दुनिया में लोग हैं जो लिखते हैं, राइटर्स हैं, वो लोग कहीं चले जाते हैं, वहाँ लिखकर स्क्रिप्ट लिखकर लौटते हैं। तो इसमें हर्ज क्या है अकेले जाने में?
1: बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हर महिला को ये अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम परिवार के साथ जाते हैं तो ये जो खासकर महिलाएं उसी उलझनों में लगी होती है कि बच्चों को नहलाना है, उन्हें कपड़े चेंज करवाना है, उन्हें खाना खिलाना है, खाना खाते खाते भी पहले बच्चों को खिलाना है फिर खाना है। पर एक उम्र के बाद में जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, 40 के बाद महिलाओं को ये अनुभव जरूर लेना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव होता है कि बहुत कुछ हम सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात है ममता जी कि हम खुद के लिए जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: नहीं तो हर बार महिला ऐसा होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जीती है।
0: मन से आप प्रसन्न होती हैं।
1: जी
0: आपने कहा महिलाओं को जाना चाहिए, क्या पुरुषों को नहीं जाना चाहिए?
1: पुरुष तो जाते ही हैं ममता जी
0: बिल्कुल,
1: भले ही वे
0: महिलाएं अमूमन नहीं जाती, डरती
1: जी
0: रहती हैं, तो इसलिए जाना जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल यात्रा सोलो ट्रिप का बढ़ता चलन, भाई ऐसी यात्राएं तो हमारे यायावरता की निशानी है, और ये यात्राएं सुखद भी होती हैं क्योंकि इसमें पाथेय का बोझ अल्प ही रहता है, फिर यदि पद यात्रा पर है तो देशाटन का लुत्फ भी आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसी यात्राओं के बहुतेरे शौकीन हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ अकेले जाना ही पसंद करते हैं, और अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी
1: जी
0: ऐसी सुविधाएं हैं जो आप अपने घर से तो अकेली निकलती हैं,
1: वहां
0: फिर
1: महिलाओं का
0: हुजूम
1: ग्रुप
0: मिल
1: मिल
0: जाता
1: जाता
0: है,
1: है। जी
0: बाकायदा ग्रुप मिलता है तो वो साथ हो जाता है।
1: जी
0: लेकिन वहां पर ये जो परेशानियां आपने बताई ना कि कपड़े पहनाना है, खाना खिलाना है, वो झंझट नहीं होते हैं, तो आप उसको, उस ट्रिप को बाकायदा एंजॉय कर सकते
1: यानी
0: हैं।
1: बच्चे भी आत्मनिर्भर बनते हैं और महिलाएं भी अपने लिए जीती हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने कहा है कि एकल यात्रा बड़ा रोचक तथ्य मुद्दा है। हम तो रेल से अकेले यात्रा करते थे, गोवा से पनवेल तक हमने यात्रा की है। हमारे घर वाले तो गांव खेड़ा का सफर करते हैं, उन्हें आके बताया जाता तो आश्चर्य हुआ उन्हें। हमारी दादी बुआ और नानी तो सफर में साथ नहीं देती, तो हमें तो रेल से मुंबई से सूरत तक एकल यात्रा करना पड़ा। बड़ा अच्छा लगा।
0: क्या बात है।

0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है ये, इन्होंने लिखा है कि सोलो ट्रिप बैंगलोर हैदराबाद का किया हमने, इससे इसमें मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। हमेशा सावधान सतर्क रहना पड़ता है, ऐसी जगह जहां लोगों की आवाजाही कम हो न जाएं, अच्छे होटल चुने और जाएं जरूर। बिल्कुल, वो तो आपको अपनी सुरक्षा और सावधानी का ख्याल रखना ही चाहिए। वो तो आप जब जिस शहर में रह रही है वहां जब घर से निकलती है तो हमेशा सजगता तो आपको बरतनी ही पड़ती है।
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि मेरी बेटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उन्हें देश विदेश घूमना बहुत पसंद है। मेरे दामाद जी बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए जब छुट्टियां होती हैं तो हफ्ते में 10 दिन का प्रोग्राम बना लेती है और अकेली ही कुछ ऐसे ही सहेलियां मिलकर घूमने निकल लेती है। एक बेटी है जो 10वीं क्लास में है, उसके लिए हम लोगों को या फिर अपने सास ससुर को बुला लेती है, विदेशों में जाकर कार हायर करके अकेली ही निकल जाती है घूमने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी आपकी बात से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी कि देखिए ऐसे अकेले भी महिलाएं जा सकती है, हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और बड़े धैर्य के साथ हम सभी चीजों का अनुभव करते हैं
0: और आप निडर बनते हैं। इसी बहाने एक श्रोता ने लिखा है कि मैं मात्र 16 बरस का था जब अकेला जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया था। सच मानिए मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे से माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये मेरे जीवन में एकल यात्रा का एक बेहतरीन अनुभव था। कई बार जब खास तौर से लड़कियां घर से निकलती हैं तो माता पिता का हाल बुरा होता है डर के मारे, यहाँ तक कि मान लीजिए ट्रेन से जा रही हैं तो परिवार के लोग उन्हें पहुंचाने आते हैं, छोड़ने आते हैं, और ट्रेन में अगल बगल के लोगों को बाकायदा परिचय करेंगे, बताएंगे कि मेरी बेटी अकेली जा रही, जरा आप ख्याल रखना। इससे क्या होता है कि जो जो आपके अगल बगल बैठे उन्हें तो ठीक है सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन बाकी जनता भी जान जाती है कि ये अकेली जा रही है, तो इससे खतरे और बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो अजनबी है आपकी कितनी मदद कर सकता है, बेहतर हो कि लड़कियों को इतनी मजबूत बनाए शुरू से, इतनी ताकतवर बनाए कि ये सब समझाने की नौबत ना आए। और अकेले यात्रा करने में कोई बुराई नहीं, ये हमारा ये कहना नहीं कि आप परिवार के साथ यात्रा करना बंद कर दें, लेकिन जरूरत पड़े तो आप जरूर जाएं और अकेले एक आध बार यात्रा करके उसका अनुभव भी लेना चाहिए। क्योंकि अब आगे समय आपका करियर का चुनाव किस तरह का है, कहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है, कहाँ नौकरी करने जाने वाली है, तो इसलिए अकेले रहने की आदत, अकेले चलने की आदत बहुत जरूरी है। कई बिजनेस परिवार में हमने देखा है कि पति रात को 2-2, 2:30, 3 बजे तक आ रहे हैं और बेटी की शादी आपने कर दी है, बेटी सिर्फ खिड़की के सामने खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि पति आए फिर खाना खाए। तो ये जो बांध देना है एक दूसरे के साथ, उसको कहा जाता है कि खूंटे में बांध देना, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए।
1: हर रिश्ते में स्पेस जरूरी है,
0: बिल्कुल
1: स्पेस होना चाहिए। एक हमारे साथी ने कहा है ममता जी कि भले ही आज टेक्नोलॉजी बहुत एक्टिव हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि अकेले नहीं जाना चाहिए, खासकर महिलाओं तो को, जहाँ तक कि नए कपल को भी अकेले नहीं जाना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए, ये मेरा अपना विचार है।
0: ये तो वही बात हो गई कि आप दिन रात डर डर के जी रहे हैं, फिर इसके मतलब इतना डर डर के कौन जीता है, फिर तो कहीं भी रिस्क है। आप घर से निकलते हैं तो आपका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा हादसा हो जाए, तो अपने मन को डर से मुक्त कीजिए और फिलहाल एक गाना सुनिए।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सखी सहेली और सोनाली जी, देखिए एकल ट्रिप की बात की हमने, सोलो ट्रिप की, तो बहुत सारे श्रोता जो असहमत थे सहमत हो गए हैं और इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अभी तक तो ज्यादातर सोलो ट्रिप ही की है, अपने मोबाइल से पहले से सब कुछ बुक कर लेता हूँ। जब से घर से दूर पढ़ाई के लिए बाहर निकले तब से मेरी आदत बन चुकी है, कोई अनुभव नहीं साझा किया किसी ने।
1: एक साथ ही कहते कि मुझे पसंद नहीं है एकल ट्रिप, मुझे ग्रुप के साथ यात्रा करना सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। वहीं एक सखी ने लिखा है कि मैं एक बार एनसीसी के कैंप में जब 10th क्लास में थी तो स्कूल से गई थी, बहुत सारी स्कूल की सहेलियों का साथ था, माता पिता या बड़े भाई नहीं थे, बहुत अच्छा लगा, बशर्ते स्कूल की टीचर्स थी, पर बहुत मजा आया। तो उन्होंने 8-10 लड़कियों के साथ ही इतना आनंद उठाया, तो जब अकेले जाएंगे तो और भी आनंद मिलेगा। सबसे ज्यादा आनंद से ज्यादा ममता जी हम बहुत कुछ सीखते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, और महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना तो एक अच्छा अनुभव भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता आपको देना चाहिए। यात्रा से पहले, गंतव्य तक पहुंचने से पहले वहां का मौसम, वहां के स्थानीय परिवहन के बारे में जानकारी हासिल कर लें, सुरक्षित क्षेत्रों की अच्छी जानकारी ले लें, वहीं पर जाएं। जहां पर सुरक्षा नहीं है वहां पर जाना, अकेले जाना तो ठीक नहीं है। हाँ, वहां जैसे सोलो ट्रिप पर निकलती है तो ग्रुप मिल जाता है तो फिर कोई हर्ज नहीं है। और होटल या रहने की जगह विश्वसनीय हो, अच्छी उसके बारे में रेटिंग अच्छी हो, ऐसी जगहों पर जाएं।
1: और सोलो ट्रिप केवल घूमने का अनुभव नहीं बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख देने वाली यात्रा भी हो सकती है। पहली सीख है कि आत्मनिर्भरता,

0: और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जो यात्रा होती है ना, उसमें चमक दमक के पीछे वास्तविक परिस्थितियां अलग हो सकती है। इसलिए केवल तस्वीरों से प्रभावित होकर यात्रा की योजना बनाने के बजाय वास्तविक जानकारी और अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
1: और ये भी कि जब आप अकेली जाती हैं तो पहुंचते ही सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर नहीं अपलोड करनी चाहिए, और ये कि हम मैं अकेली आई हूँ वो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। और सोलो ट्रिप का मतलब ही परिवार या दोस्तों से दूरी बनाना नहीं होता है, कई बार ये केवल अपने लिए स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालने का तरीका होता है, अपने लिए स्पेस निकालने का तरीका होता है, खुद से गुफ्तगू का तरीका होता है, क्योंकि अमूमन अपनी दिनचर्या में भाग दौड़ की जिंदगी में आप अपने भीतर कभी झांक के नहीं देखते, अपने से बात ही नहीं करते, अपने आपके भीतर क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं और क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक बातें हैं, कुछ भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में जब आप खाली होते हैं, कुदरत के साथ होते हैं, कुदरत का सान्निध्य होता है, तो आपकी विचारशीलता बढ़ती है, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है और खुद को समझने की आदत बनती है
0: और एक डर दूर हो जाता है ना कि अरे हम तो जा ही नहीं सकते, जो हमारे खासकर महिलाओं के मन में डर है कि हम अकेले नहीं जा सकते। तो जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, बहुत सुंदर ये दुनिया है। विशेषकर महिलाओं के लिए ये यात्रा आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का अवसर बन जाती है, बशर्ते रोमांच के साथ सुरक्षा और समझदारी का संतुलन बना रहना चाहिए।
1: रोमांच बस वो जो होता है कि चले गए मोबाइल लेकर और सेल्फी खींचने, पता चला एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है और नीचे घाटी है, बस सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं, तो उनका ख्याल रखें। पानी में जब जाएं, किसी नदी या झरने के किनारे, तो इन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि वहां पर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बाकायदा सोलो ट्रिप पर चल सकते हैं। तो चले सोनाली जी, हम भी सोलो ट्रिप पर फिलहाल
0: दोनों मिलके सोलो ट्रिप
1: गाने के जरिए चलते हैं फिलहाल।

0: तो भाई सफर सुहाना हो यही हम उम्मीद करते हैं और सबके लिए यही शुभकामना करते हैं कि जो लोग भी सोलो ट्रिप की तैयारी कर रहे हो
1: उनका सफर
0: उनके लिए
1: सुहाना हो।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सोनाली जी, ममता जी, अकेले जाने की जो बात चल रही है, हर किसी को अकेले जाना चाहिए, जिससे मन में मन का डर खत्म हो जाता है। फिर क्या क्या होता है, हम अभी 2-3 साल पहले वहां गए थे प्रयागराज, और जब मौनी अमावस्या पड़ी तो घर से अकेले ही निकले थे और उसी रात वहां पर हादसा हो गया, तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। और हमारा उसे उस टाइम पे फोन भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ हो चुका था। देखिए भाई, ये तो जब आप, ये हम नहीं कह रहे कि आप किसी हादसे के शिकार हो जाएं, जब आप, ये तो खतरा कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो सोलो ट्रिप पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप ये इमेजिन करके जाएं कि कोई खतरा होने वाला है, हमेशा समूह में जाना अच्छा होता है।
1: उन्होंने आगे लिखा है कि 3-4 दिन तक उनका फोन बंद था और 3-4 दिनों बाद वे 500 किलोमीटर दूर गए थे, तब घर आए तो घर वालों ने राहत की सांस ली।
0: तो ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर अकेले जाएं, लेकिन कभी एक आध बार आपको अनुभव तो लेना चाहिए अकेले जाने का भी, कि परिवार की वजह से आप घर से निकलना ही बंद कर दें। ये है यहाँ पर मकसद सोलो ट्रिप का।
1: और सोलो ट्रिप पे अगर आप गए और वहां पर आपको किसी ने आंटी कह दिया तो कैसा लगेगा ममता जी?
0: प्यार से सिर पे हाथ रखेंगे और कहेंगे हाँ जुग
1: खुश
0: जुग जियो, खुश रहो, ये आशीर्वाद दे देना चाहिए जो लोग आंटी कह के इस तरह छोटे बनना चाहते हैं, यही तरीका है। और कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, और कि वहां पर कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है कि अरे मुझे आंटी कैसे कहा, ये देखो।
1: मेरे बाल इतने काले हैं, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और मुझे मुझे कहा आपको मैं कहाँ से आंटी लग रही हूँ।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी कहो वाला सेगमेंट तो बहुत मजेदार है। मेरी एक छात्रा की बातें हैं, कह रही थी, वो बोली कि मैम कल हम लोग फिल्म के टिकट के लिए लाइन में खड़े थे और एक हम उम्र लड़का आकर बोला, आंटी जी 2 टिकट हमारे लिए भी ले लीजिए ना प्लीज। मैं बोली, अंकल जी आप लाइन में खड़े हो जाइए, टिकट मिल जाएगा। हंस पड़े थे लोग। तो ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि छोटी छोटी लड़कियां हैं और उनसे आप आंटी कह रहे हैं।
1: एक साथी ने कहा है कि ये बड़ा ही रोचक मुद्दा है, आंटी तो उम्र दराज महिला को कहते हैं। हमारे मोहल्ले का तालाब अजमेर में घाघरा लुगड़ी पहनने वाली औरतें कुछ बच्चे आंटी कहने के पुकारते हैं, उन्हें यही कहा जाता है। हमारी माँ तो उन्हें आंटी कहने से मना करती है, उन्होंने कहा कि मौसी या भाभी जी कहने को कहो, भाभी जी हमसे जमता नहीं, जो बड़ी औरतें हैं आपस में कहना भला। यानी इन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारी मम्मी ने भी मना करके रखा है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रहने वाला तो बुंदेलखंड का हूँ, और वहाँ पर आंटी शब्द का जो उदाहरण है वो अचूक है। जगह जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है, लेकिन हाँ मैं ग्वालियर में राजमिस्त्री का काम करता हूँ, जो हमारी श्रीमती जी हैं वो भी हमारे साथ लेबर का कार्य करती हैं। इत्तेफाक से अगर किसी ने उनको आंटी बोल दिया तो लड़ाई हो जाती है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वो हालत, वो 40 साल की हो चुकी है, लेकिन आंटी किसी के मुँह से सुनना
1: सुनना
0: नहीं
1: नहीं
0: चाहती।
1: चाहती।
0: ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप छोटों से भी आंटी शब्द नहीं कहलवाना चाहते। एक छोटी सी टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि आंटी शब्द कोई अपने से छोटा बोल दे तो अच्छा भी लगता है, पर कई बार बराबरी और बड़े बोल दे तो कभी हम उनको देखते हैं, कभी अपने आप को देखते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है, आंटी शब्द से तो न जाने कितने ही मजाकिया किससे खुद से और दूसरों से जुड़े हैं। एक बार प्राइवेट बस के कंडक्टर ने मुझे कहा, आंटी थोड़ा सा आगे हो जाओ। मैंने कहा, मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ? मैंने कहा, तुम लोगों ने 2 ही शब्द सीखे, अंकल और आंटी, तो बेचारा यूं ही आगे निकल गया, बस किराया भी नहीं लिया। 15-20 साल पहले की बात है, अब तो कोई बोल दे तो चलता है।
0: जी बिल्कुल।
1: एक साखी ने लिखा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आंटी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में चाची, मामी, बुआ, फूफी, ताई, इन सबको आंटी ही कहा जाता है। आंटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई काफी उम्र का हो चुका है, मामी, बुआ, फूफी, ताई, चाची किसी भी उम्र की हो सकती है। हाँ, मगर आंटी शब्द का चलन फैशन इस कदर बढ़ गया है कि अपने उम्र से कम उम्र के लोगों को भी लोग आंटी कहकर पुकारने लगते हैं। फिर भी अगर कोई जाने अनजाने कोई किसी को आंटी कह दे तो उसे बिल्कुल भी दिल से ना लगाए,

0: उल्टा आंटी कहकर पुकारने वालों का हंस कर मुस्कुरा कर स्वागत करे, ना कि बुरा माने।
1: कुछ इसी तरह की बात इन्होंने भी लिखी है कि आजकल किसी नई उम्र की लड़की को कोई बोल देता है तो बहुत ही बवाल हो जा रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि आंटी मतलब सिर्फ चाची ही नहीं होता, मौसी बुआ भी तो होता है। तो मान लो कि तुम उसकी मौसी हो, बुआ हो, और बुद्ध क्या उम्र ना होते हुए भी, मतलब छोटी उम्र ना होते हुए भी कुछ सामाजिक चलन है जिसमें अपने से छोटे को बड़ा समझदार कह दिया जाता है। गांव में आज भी आपसे बड़े उम्र के लोग भी माताजी कहते हैं, संबोधन देते हैं। माताजी कहने का मतलब ये नहीं कि हम उम्र दराज हो गए, हमें वहां माँ के समान इज्जत दे रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों पर तो छोटी बहन को भी दीदी कहा जाता है, और कुछ शहरों में जो स्कूल हैं, कुछ स्कूल में भी, विद्यालय में भी छोटों को दीदी भैया कहा जाता है, मतलब चाहे वो लड़के बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको भैया और दीदी कहा जाता है।
0: वही दीदी तो ताई भैया कहे, इस तरह से कहे ना तो बुरा नहीं लगता, पर एकदम से सडनली कोई आंटी बोल दे तो फिर थोड़ा सा महिलाओं को बुरा लगता है।
1: भाभी कहने में भी कोई बुरा नहीं मानता है, जबकि कई बार बहुत बड़े उम्र के लोग आपको भाभी कहते हैं तो वो अच्छा लगता है, फिर आंटी कहने में क्यों बुरा लगता है।
0: एक साथी ने लिखा है कि अगर वयस्क महिला को आंटी बोल दिया जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अभी से उम्र दराज दिखने का या महसूस करने का एक प्रयास जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब बुरा लगता है। उनके मुकाबले उसी उम्र के पुरुष को अगर अंकल कहा जाता है तब उसे जरा भी बुरा नहीं लगता। इस बारे में क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, अब ये हमारे श्रोताओं के विचार हैं और हम तो बस आनंदित हो रहे हैं आपकी टिप्पणियां पढ़ पढ़कर। एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी मत कहो, सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे लेकिन इसमें उम्र और रिश्तों को लेकर हमारी सोच छिपी है। किसी को केवल उम्र के आधार पर संबोधित करने के बजाय उसके नाम या सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करना अधिक सहज लगता है। शब्दों में अपनापन और सम्मान हो तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, इसीलिए संबोधन वही अच्छा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति सहज और सम्मानित महसूस करे।
0: एक साथी ने कहा है, मुझे भी ऐतराज है कोई हमारा हम उम्र का भी हमें आंटी कहने लगे। हाँ, हम आंटी उम्र के हो गए हैं, पर टीनेजर्स के ना कि अंकल आंटी वाले उम्र के लोग हमें कहे।
1: अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता किसी महिला को आंटी कह देने से इतना बुरा क्यों लग जाता है। आखिर ये तो उम्र और रिश्ते के लिहाज से संबोधन का एक सामान्य शब्द है, पर शायद जब किसी महिला को आंटी कहा जाता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे उम्र दराज समझ रहा है। तो उम्र को छुपाने से बेहतर है उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि खूबसूरती उम्र में नहीं व्यक्तित्व और व्यवहार में बसती है। भाई ये बात तो पुरुषों के लिए भी लागू होती है ना, कि कई बार पुरुषों को जब अंकल कह दिया जाता है बहुत कम उम्र के लोगों को, तो वो भी तो ये ऐतराज करते हैं,
0: अंकल कहाँ दिख रहा है।
1: और खास तौर से जब आप पत्नी की सहेलियां जब आती हैं और वो अंकल कह देती हैं,
0: तो
1: कहते नजर आते हैं लोग कि अरे तुम्हारी सहेलियां तो हमें अंकल कहती हैं। तो बात तो वही हो गई, अब आज विषय आंटी का रखा गया, अगली बार अंकल वाला शब्द रख दिया जाएगा। फिलहाल एक गाना सुनवा दें।

0: पापा का पासे
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: भला तुम हो ओ दिलरुबा।
1: अब ये आंटी न कहो के बारे में तो भाई बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारी एक सखी लिख रही है कि बैंगलोर में सभी महिलाओं को अम्मा कहा जाता है। मैं जब पहली बार वहां गई तो हर ऑटो वाला कोई दुकानदार अम्मा कह देता था, बड़ा बुरा लगता था।
2: एक साथी कहते कि मेरी लेडीज कलर की शॉप है, मैं भी कभी किसी को आंटी कहता हूँ तो उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आंटी का अर्थ चाची, काकी, बुआ जी, मामी, यही तो होता है ना।
1: बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या होता है सोनाली जी, कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस रिश्ते से कहा जा रहा है। मैं भी जब मुंबई नई नई आई थी तो एक बार सब्जी खरीदने गई और वहां पर सब्जी वालियों ने मुझे कहा कि ताई, मराठी में बोला ताई हे गया। तो मैंने कहा अरे, तब मुझे बिल्कुल मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, तो ताई बोला तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि मैं ताई ताई मतलब तो क्या होता है, बड़ी माँ। हम उत्तर प्रदेश या एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में ताई मतलब
2: चाची
1: मतलब बड़ी माँ एक तरह से, मतलब जो चाची है,
2: माँ की जेठानी।
1: हाँ, माँ की जेठानी हुई। तो मैं सोच रही थी कि ताई किस रिश्ते से कहा, और बड़ी दिखने का सवाल तो बाद में आया, पहले ये लगा कि किस रिश्ते से ताई कह रही है। तो एक ने कहा, दो ने, फिर दो, मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने एक बार पूछा, मतलब मुझे भी बुरा लगा, हमने कहा ये ताई किस रिश्ते से कह रही, मेरा आपका क्या नाता है। तो उसने बताया ताई मतलब दीदी। तो दीदी भी एक तरह से मतलब छोटी थी, मैं तो बहुत छोटी थी जब आई थी, तो उस समय ये अजीब सा लगता है, बुरा लगने की बात तो बाद में आती रिश्ते। तो ये जो अम्मा वाली बात है कि किसी ने कोई सीधे आपको अम्मा जी कह दे तो कैसा लगेगा, तो सोच समझ के कहना भी चाहिए। और लेकिन हाँ, जहाँ का चलन है वहाँ का आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ के बारे में जानकारी ले लें, बस यही होता है।
2: एक हमारे साथी ने कहा कि भाई मुझे कोई लोग अंकल कह देते तो मुझे

0: पुरानी लगता है।
1: एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल मैं सफर में रोडवेज में जाता हूँ तो कंडक्टर मुझे कभी कभी अंकल कह देते हैं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ, पर फिर सोचता हूँ कि उम्र भी अब इस तरह की हो गई है। तो फिर हमारे एक पड़ोसी, एक अगले श्रोता ने लिखा है, हमारी सखी है, हमारी एक पड़ोसी है जो अपनी पत्नी को मजाक में आंटी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले ट्रेन में एक सज्जन ने मुझे माताजी कहकर संबोधित किया, मैं अवाक रह गई, मुझसे उम्र में बड़ा था, आज ये बात याद आ गई मुझे। ये तो मेरी वाली बात कि जो सब्जी वालियों ने कहा था वो सब हमसे बहुत उम्र में 2 गुना 3 गुना उम्र की रही होंगी, और उन्होंने मुझे ताई कहा था और मैं एकदम से परेशान हो गई कि ताई किस रिश्ते से कहा।
0: वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को आंटी कहता हूँ। तो इसमें तो ये कहावत हुई ना कि घर का भेदी लंका डाए। कि एक ये जो हमने मुहावरा लिया है इसमें आज का मुहावरा है घर का भेदी लंका डाए। इसका अर्थ घर का कोई सदस्य घर के राज दूसरों को बता देता है तो घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इस तरह समझाया करते थे, पर आजकल हर सभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद अपने घर के भेद किसी को बताते नहीं है, खुद दूसरों के भेद जानने में लगे रहते हैं।
1: अब तो एक गूगल नाम का जो प्राणी है आपके सारा आप सारे भेद खोल देता है, तो इसलिए आपको बहुत सजग रहना चाहिए। कई बार आपने गूगल से एक आध बार कोई एक चीज सर्च कर ली तो बार बार उसी के मैसेज आते हैं, वही चीज आपको, वही ब्रांड, वही चीज, वही वस्तु दिखाई देती है।
0: मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी हमारे मन का भी जान लेता है।
1: बिल्कुल,
0: मन में कभी सोचा है तो उसी के आने लगती है।
1: क्योंकि जब हम कोई विमर्श कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस बीच कभी भी आपने मोबाइल यूज किया तो वो बात तो चली जाती है,
0: शब्द पकड़ लिया तो उसी के आती। एक और
1: कई बार अलेक्सा अगर आपके घर में है और आपने कोई शब्द ऐसे बोला और मुंह से अ ल निकला एक साथ तो अलेक्सा तुरंत बोल पड़ती है। तो ये जो हो गया है ना कि अब टेक्नोलॉजी के साथ घर का भेदी लंका ढाए वाला मुहावरा अब इस तरह से भी बदल गया है कि आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है घर का भेदी लंका ढाए बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है और इस दृष्टिकोण से केवल विभीषण के चरित्र को भलीभांति याद किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप ही रावण का वध हो गया। भाई अजब तेरी दुनिया, गजब तेरी कारीगरी रे, सरकार जो समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति ही मिल जाया करती है।
1: अब एक गाना सुने
0: सुनते हैं।

0: नया दौर फिल्म का ये गाना था और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे श्रोताओ, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
2: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहां मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स लिए, और उस बाइनोक्यूलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं,

सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के जमाने से कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से ये सपना

0: पूरी तरह एक एक्टर बनूं, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूं और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े,
0: जी
1: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है?
0: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहां ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, न किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत है और रोल मांगने की जरूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं, और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के जमाने से। जब हम किंडरगार्टन में थे तो दो तीन ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, और ऐसी कहानियां सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहां से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीच में बीचों बीच में हूं इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूं, जो मेरे रूट्स हैं, टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं, तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है, और उस संगम के बीचों बीच में हूं इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
0: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतजार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है? हम देखते हैं बंबई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
0: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय तेंदुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मतलब बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें, बाकी सब अडेप्टेड प्लेज हैं। और जहां तक गुजराती और मराठी प्लेज का सवाल है, वहां भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेज नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेज हैं और गुजराती प्लेज, जो रीजनल थिएटर है, वो ज्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्लेज से ही अडेप्टेशन हैं, अगर आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहां से आए। फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेज हैं, जो इंग्लिश प्लेज यहां चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं, वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेज ज्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है, जैसे बंबई में पृथ्वी और एनसीपीए है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है। उसके अलावा कहां आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहां 19-20 लोग बैठे रहते हैं। हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी, पृथ्वी थिएटर में किया हमने, पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था, 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर। तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले

0: एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रेसिनियम पे ले जाएं, भाईदास में ले गए और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था. सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए. इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है. और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी.
1: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे.
0: जी हाँ, मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुने.

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहां तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णैया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के कि बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में। और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी वहां, आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बंबई आए, शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा ये सोच के। बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया, और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जानें चली गई उस

0: फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर, और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर, और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और सीरियल खत्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
1: बार बार नहीं आते
0: और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पुर्णैया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के जमाने में, और फिर उनके बच्चों के साथ भी था। जो तीन पीढ़ियां हैं, तीन जनरेशन्स के साथ, ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने काफी बुक्स पढ़े पुर्णैया के बारे में, कभी स्केचेस देखे कि पुर्णैया दिखता कैसा है। हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी की बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है। तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी ने, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात, हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें। पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पांस था ऑडियंस उसका, तो हो सकता है हमने तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं, और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा
0: जी।
1: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
0: हाँ, अंतर मैं कहूंगा, एक उदाहरण देता हूं आपको
1: जी।
0: अगर आप कहेंगे कि फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
1: अच्छा,
0: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
1: बहुत खूबसूरत बात है।
0: फिल्म जो है हमको बड़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल हैं, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं, तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गए कि आपको उसी तरह से बोलना है, आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
1: अच्छा।
0: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से, लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
1: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं। आपको क्या आपने मन माफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
0: दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता

0: हूं शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स में थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूं उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहां एक छोटे से रोल में ले लो, वहां खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की जरूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की जरूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मजा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
1: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा या आपको लगा रहे मैं काम फंस गया?
0: नहीं, फंसे तो वो थे ना जो दूसरे कैरेक्टर थे। मजा तो बहुत आया क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूं अगर मैं ये बात कह सकता हूं, लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बन के आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
1: चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
0: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता।
1: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: अनंत जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूं। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम पिन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूं और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूं या डायरेक्टर पाता हूं।
0: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
1: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी जिसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी थी। और उस वक्त हम दिल्ली में थे, और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है। उसकी फैक्ट्री, सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं है, हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में हैं और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब, ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था। जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूं कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था, और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब बम्बई में है हम।
0: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं, या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
1: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉयड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी।

0: ये बातचीत।
1: आप यहां इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस की सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप में लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरे टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ भी नहीं आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहां मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे विमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिदा ऋषिकेश मुखर्जी जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया।
2: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
1: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
2: जी,
1: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाई थी सीरियल। और इसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो है वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है। तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मजा आया। और वहां मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूं और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं। तो घर जमाई में बहुत मजा आया, और भी काफी सीरियल्स थे लेकिन शायद इसमें जो मजा आया वो दूसरों में नहीं।
2: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
1: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे हेमंदा का गाया हुआ।
2: वाह।

0: अनन जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग, जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है वो आदमी। शायद उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे वो सारे कैरेक्टर्स। वहां के जो कैरेक्टर्स थे उसने आपको सबसे ज्यादा हंसाया। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी हुई,
0: ये तो
1: ऐसा मेरा कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
1: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं, ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब
0: बिल्कुल
1: आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ। तो सोशल सीरियल बनाना
0: बिल्कुल
1: बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल बनाना बहुत मुश्किल है।
0: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग, आराम से जाएं सेट पर, मेकअप लगाएं और शुरू हो जाएं एक्टिंग करना,
1: बिल्कुल
0: या फिर
1: बिल्कुल
0: पूरी
1: बिल्कुल,
0: जिम्मेदारी बोझ पर सर
1: डायरेक्शन के
0: पर?
1: बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों में, फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
1: नहीं, जितना महत्व हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है। तो ज्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व देना है वो फिल्म फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है। और जहां हमको एक गाना होता है वहां 6 गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाए हम।
0: जी
1: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में 6-6 गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर देंगे।
0: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ?
1: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है, और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियां होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जो टेलीविजन का फॉर्मेट ही अलग है, और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
0: अच्छा, आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई, जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परसेंगे परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
1: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया। लेकिन उसका फायदा ये भी था कि जो भी हम

0: ने दूरदर्शन में किया, वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फर्क आया है और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: अभी अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।
2: हंसने की चाह ने

0: हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है। आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार, जब थिएटर के बाद फिल्में आईं, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे। वीडियो के बाद जब डीवीडी आए तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं, वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है। जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज़ टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविजन के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा। नहीं, वो सही बात नहीं है। रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा,
1: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
0: बिल्कुल, इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
1: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं, नहीं मेरा मतलब है, हा? कि ठहरिए, होश में आऊं, गाना है।
0: ओह अच्छा, बहुत खूबसूरत।

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, ये कितनी गलतियां आपको मिलेंगी वो सिर्फ मैं जानता हूं। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है।
0: जी
1: मैं बंबई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से। और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
0: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते या फिर कुछ लिखते नहीं है, आप क्या करते हैं?
1: हाँ, संगीत में
0: रुचि है?
1: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है तो देखना बहुत ज़रूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया की सारी फिल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फॉर्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीज़ों में मन लगा रहता है।
0: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
1: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों के सपनों से ही शुरू की थी, तो
0: बिल्कुल।
1: सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मजा आया, या तो ये कहें कि वाह कि दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूंगा, कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाए जो बहुत ही यादगार रहे।
0: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
1: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहां गाना शुरू करूं। फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूं।

0: बहुत खूबसूरत अनन जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथ।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं मोहब्बत तीन तरह की होती है, जो हमें मिले कबूल करे ये नसीब है, दूसरी वो जिसे चाहे वो इंसान मिल जाए ये मुकद्दर है, और तीसरी मोहब्बत वो होती है कि हमें मालूम होता है कि उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर भी दिलो जान से मोहब्बत करते रहना, इसे ही इश्क कहते हैं। और ये इश्क बड़ा बेरहम होता है।

से करनी है तो फिर वादा नहीं करना कि वादे टूट जाते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर जिद नहीं करना के साथी छोड़ जाते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो कभी शिकवा नहीं करना, ये शिकवे गिले दिलों को दूर करते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो सिर्फ मोहब्बत करो ना जाना, कि मोहब्बत ही मोहब्बत को मजबूत करती है।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मैंने मोहब्बत का चेहरा तो नहीं देखा, मैंने तुम्हें देखा है। अगर मोहब्बत की कोई सूरत होती तो वो हूबहू तुम्हारे जैसी होती। अगर मोहब्बत बोल सकती तो लहजा तुम्हारी जैसा होता। तुम्हें पता है तुम वो इनाम हो जो बिन मांगे मिल गया, वो खजाना हो जिसका कोई मोल नहीं। तुम्हें देखते ही सांसें महक जाएं, धड़कने बहक जाएं, मेरे बाग़े मोहब्बत का वो खुशनुमा फूल हो तुम। किसी नेकी का सिला जख्मों का मरहम, दोस्त जाने मन सुकून जिंदगी। मुख्तसर सी बात है मेरा सब कुछ हो।

मोहब्बत सावन नहीं जो टूट कर बरसे और थम जाए, मोहब्बत आग नहीं सुलगे भड़के और राख हो जाए, मोहब्बत आफताब नहीं उभरे चमके और ढल जाए, मोहब्बत तो महताब है बढ़ता है घटता है निकलता है छुपता है मगर कभी फना नहीं होता, तुम्हें देखूं तो कहीं भी नहीं सोचूं तो कुछ भी नहीं मगर जो कह दूं तो तुम मेरे होने की सनद हो, मेरी एक हद है और उसमें बेहद हो।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एश किंग और क्लिंटन की आवाज़ों में बॉडीगार्ड फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं शबीर अहमद और नीलेश मिश्रा। हिमेश रेशमिया ने संगीत दिया है इसका।

अब आपको सुनवा रहे हैं नीलेश मिश्रा का लिखा और एमएम क्रीम का संगीतबद्ध किया गाना। श्रेया घोषाल ने गाया इसे, फिल्म का नाम जिस्म।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा और जतिन ललित का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है यस बॉस।

0: अगला गाना हमने लिया है चांदनी फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं शिव हरी। आवाजें हैं श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की।
1: चांदनी

哈哈哈

Ha!

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया बेरंगूर पिया है वहाँ से पहली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में सलामी फिल्म का गाना तराने। नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:05 से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवियों और स्वजनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। सरकार ने कहा है कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR पर GST से छोटे व्यापारियों पर बोझ नहीं पड़ेगा और न ही डिजिटल भुगतान महंगे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी रिपोर्ट को गलत बताया है। NPCI ने कहा कि MDR केवल 2,000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर लागू होता है। NPCI ने कहा कि 2,000 रूपये तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर MDR शून्य है और इसलिए GST का कोई प्रभाव नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। LDP के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक तारो कोनो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री तारो कोनो पहले जापान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और डिजिटल मंत्री रह चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल भारत जापान विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिन के भारत दौरे पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने क्रिकेट टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में सड़क फिल्म का गाना। समीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए पैपॉन और सुनिधि चौहान की आवाजों में बर्फी फिल्म का गाना। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार हैं प्रीतम।

आइए अब सुना जाए लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में सनम बेवफा फिल्म का गाना। गीतकार हैं सावन कुमार और संगीतकार हैं महेश किशोर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में कालिया फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी के बोल और आरडी बर्मन की है तर्ज़।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज के शेष कार्यक्रम इस प्रकार हैं। संध्या 6:35 से सुनेगा कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 6:45 से सुनवाएंगे संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। आज 7वीं कड़ी सुनिएगा। कलाकार हैं गायक

डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। शाम 7 बजे से फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रहसन। इंटरनेशनल प्रॉब्लम बेजारी, लेखन अजय भारती का, निर्देशन मुख्तार अहमद का। रात 8:15 से चित्रलोक। रात 9 बजे से सुनवाएंगे आपके लिए, रात 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता प्रेम चोपड़ा पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का। रात 10 बजे से आपको सुनवाएंगे छाया गीत, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात और रात 11 बजे से सुनिएगा रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए कल 23 सितंबर के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 6:05 से भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदनवार सुनिएगा। 6:35 से सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 320। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनिएगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। कल 8वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनेगा त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर राजेश झा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह कल सुबह 8:30 से सुनेगा चित्रलोक। सुबह 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉयड के सितारे, इसके अंतर्गत अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की बातचीत सुनेगा, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। कल सुबह 11 बजे रात्रि 11 बजे से रंग तरंग। दिन में 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से सुनेगा त्रिवेणी। दोपहर 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे। कल के विषय हैं विलुप्त होती लोरियां, पारंपरिक गीत, शब्द हमारा विचार आपके के अंतर्गत आशा, साड़ियों का संसार के अंतर्गत बाघ प्रिंट साड़ी मध्य प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, व्यंजन के अंतर्गत लौकी के व्यंजन, संवादक सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनेगा आज के मेहमान, संगीतकार संगीत संयोजक अप्पा बढ़ावकर से यूनुस खान की बातचीत सुनवाएंगे, प्रस्तुति जुबैर खान की। छाया गीत का पुनर्प्रसारण सुनते हैं शाम 5 बजे से। शाम 5:30 सुनेगा तराने नए पुराने, संध्या रंजन शाम 6:35 से। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से सुनेगा कल इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। कल रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत नाटिका जमीन के लोग, लेखन वी एम आनंद का, निर्देशन दीनानाथ का। चित्रलोक रात 8:15 से आपके लिए, रात 9 बजे से। कल रात 9:30 से आपको सुनवाएंगे आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री तनुजा पर, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। रात 10 बजे से छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं वेद भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। लीजिए इसके अंतर्गत सुनिए संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये गीत, इसे गाया है मुकेश और साथियों ने, भरत व्यास ने लिखा इसे।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संध्या रंजन, और इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है आशा भोसले की आवाज में अमर फिल्म से। शकील बदायनी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि इन दिनों संगीत सरिता कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत की इन दो शैलियों पर संगीत श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। अब तक आप ख्याल के विषय में सुन रहे थे, आज से तराने को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। प्रस्तुत श्रृंखला के अंतर्गत राग मेघ में ख्याल की बंदिश और तराने पर सोदाहरण जानकारी दी है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। कभी कभार क्या होता है कि ख्याल की रचना और उसके भावों का राग से कोई मेलजोल नहीं होता। इस दशा में बंदिश और राग में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इसलिए गायक व रचनाकार को गहरा अनुभव होना चाहिए। तो सुनिए राग मेघ में मेरी स्वरचित यह बंदिश, जिसमें राग और प्रकृति का तादात्म्य और साम्य है।

वैसे तराना का शौक मुझे शुरू से रहा है। तराना भी गायकी का महत्वपूर्ण अंग है। इस बारे में हम आगे विश्लेषण करेंगे। राग मेघ का तराना गालिबन आमिर खान साहब द्वारा कंपोज किया गया है, जिसे मैं आपके सामने एक ताल में गाकर प्रस्तुत कर रहा हूं।

0: राग मेघ में तराने के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप जानते ही हैं कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज आपने इसकी सातवीं कड़ी सुनी। सोदाहरण प्रस्तुति प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज की थी। इनके साथ हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर ने संगति की और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने साथ दिया। कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए ख्याल और तराने की विशेषताएं शीर्षक श्रृंखला का आठवां भाग।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओ।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं, नहीं, अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: बोलो, बोलो।
3: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह इस फिल्म से।

फौजी साथियों, अभी आप सुन रहे थे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म का ये देशभक्ति गीत, जिसे गाया था सोनू निगम, मनमोहन वारिस और साथियों ने, समीर के थे बोल और एआर रहमान की थी तर्ज। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में रिफ्यूजी फिल्म का गाना। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। फौजी साथियों, लीजिए अब सुनिए अभिजीत की आवाज में जोश फिल्म का गाना, समीर के हिबोर और तर्ज अनु मलिक की।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। फौजी साथियों का कार्यक्रम चल रहा है जयमाला। फौजी साथियों आपका फिर से स्वागत, और लीजिए अब सुनिए हंस राज हंस की आवाज में जोड़ी नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: एक विलक्षण गायक।
4: अरे ओरे है।
5: संगीत के साधक।
4: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
5: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
4: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
5: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
5: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
7: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सोनू निगम और अलीशा चिनॉय की आवाजों में नो एंट्री फिल्म से समीर के हैं बोल और तर्ज बनाई अनु मलिक ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एंट नबरी लाइक यू इस गाने के साथ, जिसे इसी नाम के एल्बम से लिया है हमने। योहानी और मेलोडी ने गाया इसे, और योहानी और रूह जो ये संगीतबद्ध किया है, मेलोडी और साथियों ने इसे लिखा है। लीजिए सुनिए।

हमारी अगली पेशकश शिद्दत फिल्म से। इसे गाया है सचेतनन, निकिता गांधी, मधुवंती बागची और सचिन जिगर ने। लिखा है प्रिया सरैया ने और संगीतबद्ध किया है सचिन जिगर ने।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश पल पल दिल के पास, इस फिल्म से सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाजें, सिद्धार्थ करिमा के बोल और सचेत परंपरा की है तर्ज़।

0: श्री अजय भारती का लिखा प्रहसन प्रस्तुत है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम बेजारी।
1: और ये देखो टॉन्सिल जो चुपके चुपके बहने लगे हैं।
2: लगता है तुम बेजार हो गए हो।
1: बेजार? लेकिन इसकी वजह विजय, मेरे तो एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। अगर ये बेजारी दूर न हुई तो मैं पास कैसे होऊंगा? विजय, तुम्हारी मेडिकल बुक्स में इसका कोई इलाज नहीं। कैसे डॉक्टर हो तुम?
2: अरे भाई, बेजारी का भी कोई इलाज होता है? बस हंसो, गाओ और खुश रहो, तुम्हारी बेजारी अपने आप दूर हो जाएगी।
1: लेकिन विजय।
2: घबराओ नहीं सुनील, हिम्मत रखो, इम्तहान पास करने के बाद तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। तुम यहीं ठहरो, मैं जरा दूसरे मरीज को देखूं।
3: डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बीमारियों के जमघट ने मुझे घेर लिया हो।
2: मसलन
3: जिगर में गुदगुदी सी उठती है, दिल करवट लेकर उठ बैठता है, फिर दोनों तिलमिलाने लगते हैं और गुर्दे तक पहुंच जाते हैं। एक घबराहट पैदा होती है और जज्बात का तूफान लहरें मारता हुआ भगवान जाने कहां से कहां पहुंच जाता है, वगैरह वगैरह।
4: आप बेजार तो नहीं है?
3: अजी क्या मतलब?
4: मेरा मतलब है आप कहीं दुनिया

0: से बेजार तो नहीं है?
1: बेजार? ओह, मैं समझ गया, नाचीज का तखल्लुस बेजार नहीं मजबूर है, वैसे मतलब एक ही है दोनों का।
2: माफ कीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं।
1: जी, ये किस तरह हो सकता है? आपका कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ तफरी के लिए आए हैं?
2: जी नहीं, मेरा कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था, बल्कि मैं तो कह रहा था कि जब तक आपके गुर्दे और जिगर अपनी अपनी जगह सलामत हैं, आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती।
0: विजय, मेरा ख्याल है मैंने इनकी बीमारी समझ ली है। क्यों मजबूर साहब, आखिरी गजल आपने कब कही थी?
1: अजी हुजूर, यही कोई 2.5 महीने हुए।
0: और बीमार कब से हैं आप?
1: बस ये 2-2.5 महीने से।
0: तो ये गजल अभी तक आपने किसी को नहीं सुनाई?
1: जी नहीं, अभी तक तो नहीं सुनाई।
0: तो ऐसा कीजिए, ये गजल आप मुझे सुना दीजिए।
1: नहीं साहब, ये क्या फरमाते हैं आप, कहां मैं और कहां मेरी ये शायरी। लेकिन खैर, आप चाहते हैं तो लीजिए, उनवान है कबूतर, अर्ज किया है, अजी बोल कबूतर बोल, देख कोयलिया कूक रही है, मन में मेरे हूक उठी है, क्या तुझको भी भूख लगी है, बोल गुटुरगू बोल कबूतर बोल कबूतर बोल।
0: वाह वाह वाह,
1: अर्ज करता हूँ। क्या मेरा साजन कहता है, क्यों मुझसे रूठा रहता है, क्यों मेरे ताने सहता है, भेद ये सारे खोल कबूतर बोल
0: कबूतर बोल। वल्ला, आपने तो कमाल कर दिया।
1: जी आपने तो खामखा शर्मिंदा किया मुझे।
0: आपकी तबीयत अब कैसी है?
1: अजी बिल्कुल आराम है मुझे, बस ये नींद सी महसूस हो रही है मुझे।
0: हाँ, जाइए आराम कीजिए, फिलहाल आपके लिए इलाज की कोई जरूरत नहीं है, अगर फिर भी कोई इस किस्म का दौरा उठे तो तशरीफ ले आइएगा।
1: जैसी आपकी मर्जी, आधा और से आधा और से
0: आधा और से आधा और से। भाई विजय, बेजारी भी वाकई एक बहुत बड़ी बीमारी है।
2: जी हाँ, हर घर में तुम्हें इसके जर्म्स दिखाई देंगे। बच्चे बेजार हैं कि उन्हें डांट दिया जाता है, माँ बेजार है कि नौकर कहना नहीं मानते, नौकर बेजार हैं कि बाबूजी के दोस्त बहुत परेशान करते हैं, बाबूजी परेशान हैं कि बच्चों के मामा हर तीसरे दिन शिकार खेलने आ जाते हैं, मामा बेजार हैं कि राइफल का लाइसेंस अभी तक नहीं मिला, चचा अगर चाहें तो राइफल का लाइसेंस आसानी से मिल सकता है, चचा बेजार हैं कि उनके साहबजादे अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करेंगे, उनके साहबजादे बेजार हैं कि जिस लड़की को वो चाहते हैं वो अब खिंची खिंची सी रहती है, और लड़की बेजार है कि उसका हाजमा खराब होता जा रहा है और अक्सर पसली में दर्द हो जाता है, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चला कि ये बेजारी शुरू कहां से होती है और इसका खात्मा कहां होता है।
0: लगता है जैसे बेजार रहना लोगों का शगल हो गया है। इसी किस्म की एक बीमारी और भी है, मूड।
2: जी हाँ, इस बीमारी से बचने का एक उपाय हो सकता है। तुमने कोठियों के फाटक पर नाम की तख्तियां तो लगी देखी होंगी ना, वहां इन और आउट लिखा होता है, बस वहीं उनके पास ही एक खाना अगर मूड का भी बना दिया जाए तो इस बीमारी पर काफी काबू पाया जा सकता है। किसी से मिलने के लिए गए, तख्ती पर इन के साथ ही अगर हैप्पी मूड भी लिखा है तो फौरन ही टाई की नॉट ठीक करते हुए धड़धड़ाते हुए अंदर चले जाइए। और अगर एंग्री मूड लिखा है तो उल्टे पांव वापस लौटकर मुसीबत से बचाने पर भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए।
0: आजकल के जमाने में इस किस्म के सुधारों की बहुत सख्त जरूरत है।
2: तुम्हें मालूम है, एक बार मेरे साथ एक अजीब वाकया गुजरा। न जाने कैसे दिमाग में ये बैठा हुआ था कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे किसी से मोहब्बत हो जाती है, और फिर भले ही मोहब्बत आगे चले या ना चले, लेकिन जिंदगी भर उसका असर खत्म नहीं होता। होनी थी सो होकर रही, और हमने ये समझ कर कि यही पहली और आखिरी मोहब्बत है, अपना बुरा हाल कर लिया। वो लड़की मुझसे 1 साल बड़ी थी, डील डॉल में भी अच्छी खासी थी, बातें निराशावादियों जैसी करती थी, हर वक्त बैठती सोचती ही रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी।
0: मेरा ख्याल है वो भी जिंदगी से बेजार होगी।
2: हाँ, कितनी बार मैंने कोशिश की कि उससे कुछ कहूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी में मैं उन्हें कुछ ना कहूं और वो कुछ ना समझें, और दोनों का वक्त मुफ्त में ही बर्बाद होता रहे, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सका।
0: क्यों?
2: जब भी मैं इस इरादे से जाता वो इस कदर संजीदा हो जाती कि मेरी बात करने की हिम्मत ही ना पड़ती, और मौसम और फलों के बारे में बातें करके वापस आ जाता।
0: यानी तुमने अभी तक उससे कुछ कहा ही नहीं?
2: नहीं यार। और सुन, एक दिन मुझे पता चला कि वो कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी

0: के साथ कहीं बाहर जाने वाली है। एक मोहब्बत के मारे दोस्त ने बताया कि यार जाते जाते अगर उससे इजहार इश्क कर दिया जाए तो बहुत कारगर साबित हो सकता है।
1: फिर तुम उससे मिले?
0: हाँ मिला था, लेकिन मैं पक्का इरादा करके उसके पास जाकर बैठा। बोली, अरे अरे जरा परे हटकर बैठो, इतनी तेज सेंट लगाकर क्यों आए हो इस वक्त? मुझे तो पहले ही जुकाम है, ताज्जुब है तुम्हें जुकाम नहीं होता? सुनो तो।
1: हाँ बोलो बोलो।
0: मैंने कहा, देखिए मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ जिसके जवाब पर मेरी सारी जिंदगी का दारोमदार है, लेकिन लेकिन आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? बोली, हाँ जा रही हूँ, आपको कोई एतराज है क्या? मैंने कहा, नहीं, लेकिन लेकिन आप मेरी बातें सुन तो लेंगी ना? तो कहने लगी, सुनने को तो सुन लूंगी, लेकिन तुम मेरी दाहिनी आंख की तरफ टकटकी बांध कर क्यों देख रहे हो? माना कि मच्छर काटने से ऊपर की पलक जरा सूज गई है।
1: तो तुम क्या वाकई उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे?
0: अजी

0: तो लेंगे ना। तो कहने लगी, सुनने को तो सुन लूंगी, लेकिन तुम मेरी दाहिनी आंख की तरफ टकटकी बांध कर क्यों देख रहे हो? माना कि मच्छर काटने से ऊपर की पलक जरा सूज गई है।
1: तो तुम क्या वाकई उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे?
0: अजी तौबा, मुझे तो पसीने छूट रहे थे उस वक्त। मैंने कहा, मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं कि आपकी पलक सूजी हुई है। बोली, इसका मतलब तुम साबित कर रहे हो कि चोर की दाढ़ी में तिनका? खैर तो बातें क्या है जो तुम कहना चाहते हो? मैंने बड़े दर्द भरे लहजे में कहना शुरू कर दिया, देखिए शायद ये बातें मैं कभी ना कहता, लेकिन लगातार आपकी बेरुखी और बेपरवाही ने मुझे, अरे मैं इतना ही कह पाया था कि वो मेरी बात काट कर बोली, तुम्हारा गला क्यों बैठा हुआ है? जुकाम या नजला हो गया है क्या? हालांकि मैंने आवाज को पुरदर्द बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वहां जुकाम और नजला दिखाई दे रहा था।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर मैं कुछ कह सकूं इससे पहले ही उनकी एक सहेली आ गई, लिहाजा मुझे वापस लौटना पड़ा। कुछ दिनों के बाद पता चला कि मोहब्बत और बेजारी एक दूसरे के जानी दुश्मन है।
1: भाई विजय, आखिर ये इंटरनेशनल बेजारी है क्यों?
0: ये बेजारी वाकई एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गई है। हर घर में इसने अपनी जड़ें जमाई हुई हैं। शादी ब्याह के अहम मामले को ही ले लो, शादीशुदा लोग बेजार हैं कि शादी क्यों कर बैठे, और कुंवारे बेजार हैं कि शादी कर लेते तो अच्छा था।
2: डॉक्टर विजय कुमार MBBS।
0: लो, बेजारी का एक नमूना और चला आया। हाँ भाई, हूँ। आओ, क्या बात है, बेजार दिखाई दे रहा हो?
2: अमा बात ही कुछ ऐसी है, तुमसे मैं एक अहम मामले में राय लेने आया।
0: अच्छा अच्छा, ये है मेरे दोस्त मिस्टर सुनील, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। और सुनील, ये है मिस्टर आनंद कुमार, PhD, फिलोसफी के प्रोफेसर है कॉलेज में।
1: बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।
2: अच्छा हुआ आपसे भी मुलाकात हो गई।
0: हाँ भाई, बात क्या है?
2: भाई बात यह है कि मैं फौरन ही शादी कर डालने का फैसला कर चुका।
0: शादी?
1: बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है?
2: परेशानी की ही तो बात है भाई, शादी करना फिलहाल मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर शादी नहीं की तो पता नहीं क्या होगा।
0: अगर ऐसी बात है तो एक लड़की पसंद करके उससे शादी कर डालो।
2: परेशानी तो इसी बात की है कि शादी करने के लिए कैसी लड़की पसंद करनी चाहिए।
0: अरे भाई, जो ठीक समझो उससे कर लो।
2: नहीं, राय लेनी जरूरी है।
0: अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ करोगे अपनी जिम्मेदारी पे करोगे?
2: तो उसकी तुम फिक्र ना करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। इस वक्त मेरी निगाह में 5 लड़कियां हैं।
0: 5?
1: तो आप 5ों से शादी कर लीजिए, उनमें से जो अच्छी लगती है उसको छोड़कर बाद में बाकी 4ों को तलाक दे दीजिए।
2: अमा, अगर ऐसा करने से परेशानी खत्म हो जाती तो मैं आप लोगों से राय लेने ही ना आता। बात यह है, ये 5 लड़कियां हैं, मीना, शीला, माला, विमला और मिस शिमला। तुम्हारे ख्याल से कौन सी अच्छी रहेगी?
0: मेरे ख्याल में तो सभी अच्छी हैं।
2: सोच समझ कर जवाब दो।
0: मीना अच्छी रहेगी।
2: मीना? भला बताओ काहे की मीना? बड़ा शायराना नाम है, वैसे अच्छी खासी है, लेकिन उसकी नानी का दिमाग चल गया था।
1: और मीना
2: अभी तक तो ठीक है, लेकिन क्या पता कमर जोर पकड़ ले।
0: खैर, तो शीला सही?
2: शीला बस यूं ही कह दिया, देखा है कभी, दिन ब दिन दुबली होती जा रही है।
1: यानी आपको डर है कि दुबले होते होते कहीं वो गायब ना हो जाए?
2: अमा नहीं, ये बात नहीं, फिर भी कुछ जी नहीं मानता।
0: तो फिर माला सही?
2: माला?
0: हाँ।
2: तुमने कभी ध्यान से उसके चेहरे को देखा है? उसकी एक आंख छोटी और एक बड़ी। इसके अलावा हर वक्त वो गुमसुम बनी बैठी रहती है, आज तक उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा।
0: लेकिन विमला कितनी हंसमुख है। हाँ?
2: लेकिन उसके मोटे हो जाने का बड़ा डर है, मुझे तो डर है कि 2-3 साल में फूल कर गुब्बारा हो जाएगी।
0: तो फिर ऐसा करो, मिस शिमला से ही शादी कर लो।
2: वो अच्छी तो जरूर है, उसमें गुण भी बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो बातूनी है। क्या मजाल जो उसके सामने कोई जुबान भी हिला सके।
0: भाई, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं।
2: आपकी क्या राय है मिस्टर सुनील?
1: मेरी राय तो यह है कि इन हालात में आपको सब्र कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक, मेरी भी यही राय है।
2: सब्र कर लूं? क्या मतलब?
1: मतलब कुंवारे नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, किसी ना किसी दिन आपको।
2: अमा आप तो मजाक करने लगे, रियली आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस।
1: अच्छा, तो एक काम कीजिए, पर्चियां डाल लीजिए, जिस लड़की के नाम की निकले उससे शादी कर लीजिए।
2: बड़े अफसोस की बात है, आपके सामने दिल का राज कहना।
0: अच्छा,
2: भी
0: अच्छा अच्छा अच्छा, एक सही राय दूं?
2: हाँ दो।
0: तुम छुट्टी लेकर पहाड़ पर चले जाओ, वहाँ अच्छा खाना खाओ, खूब कसरत करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, और जब सेहत बन जाए तो वापस आकर किसी एक लड़की से शादी कर लो।
2: तो गोया ये इज्जत है तुम्हारे दिल में मेरे जज्बात की।
1: नहीं नहीं मिस्टर आनंद, कसूर ना किसी लड़की का है और ना आपका, बस आप बेजार हैं, बिल्कुल बेजार। जी? अपनी जिंदगी से, अपने आप से, दुनिया से, हर चीज से बेजार हैं।
2: आप लोग वाकई मेरा मजाक

0: बुला रहे हैं। ठीक है, अब मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते। देख लिया भैया, बेजारी का जीता जागता नमूना। किसी बात से तसल्ली नहीं होती भाई की।
1: विजय, मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि आखिर ये बेजारी चीज क्या है।
3: डॉक्टर साहब,
2: क्या है?
3: ये बोर्ड पेंट हो गया है, टांग दू इसे?
2: हाँ हाँ, टांग दो।
1: डॉक्टर विजय कुमार, बेजारी के डॉक्टर?
2: हाँ, डॉक्टर विजय कुमार MBBS, मरीज ना आने की वजह से बेजार होकर बेजारी के डॉक्टर बन गए।

अभी आपने श्री अजय भारती का लिखा प्रहसन इंटरनेशनल प्रॉब्लम बेजारी सुना। निर्देशक मुख्तार अहमद।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में ऊंचाई फिल्म के गाने के साथ। इरशाद कामिल के हैं बोल और अमित त्रिवेदी की है तर्ज।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती।

भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए तेरा क्या होगा लवली इस फिल्म का गाना। देसाई मदाना, रुचिका चौहान और नकश अजीज की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल और अमित त्रिवेदी की है तर्ज।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए भूमि त्रिवेदी और साथियों की आवाज़ों में रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। कौसर मुनीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन।
4: मैं निकला ओ गड्ढे।

0: करना है।
1: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
2: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए OMG 2 फिल्म का गाना। श्रद्धा मिश्रा ने गाया इसे। गीतकार और संगीतकार हैं संदेश शांडिल्य।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है, आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वही निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों

0: के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
2: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
3: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद

0: सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में मुगले आजम फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायूनी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद। प्यार किया तो डरना क्या।

दोस्तों, हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में नजराना फिल्म से राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और रवि ने बनाई है तर्ज़।

0: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

आइए अब सुना जाए मेरे महबूब फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, शकील बदायनी ने लिखा है इसे और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है चाइना टाउन।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का गाना हसरत जयपुरी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

श्रोताओं, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में तीसरी मंजिल फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल और आर डी बर्मन की है तर्ज़।

0: ये है विविध भारती।
1: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक खलनायक की।
1: भारत ने जो थोड़ा बहुत जमा किया था वो मेरी पढ़ाई पे खर्च कर।
2: जय जय राम जी की। लखपति जरा खाता देखकर बताना कि भारत ने कितना रुपया जमा कराया था और सूद के साथ वापस कितना लिया और कब लिया।
3: प्रेम चोपड़ा, सिनेमा के पर्दे पर एक नहायत शरीफ है, मेरा मतलब है एक नहायत आवारा बदनाम शख्स, पर जिसे आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है। आप भी सोच रहे होंगे कि आप फिल्मों में मेरे जुल्म देखकर मुझे गालियां देते हैं, मुझसे नफरत करते हैं और मैं इसे

0: मैं हिसाब की किताबें देखना चाहता हूँ।
1: पूरा हिसाब की किताबें?
0: हाँ।
1: तूने ये क्यों पूछा है?
0: इसलिए कि मैं भी इस कमाई का हिस्सेदार हूँ।
1: हिस्सेदार?
0: क्यों, क्या मेरा इस पर कोई हक नहीं? क्या मैं ये सब कुछ नहीं पूछ सकता?
1: नहीं नहीं पूरन, सब कुछ दे रहे हैं, बोल तुझे क्या चाहिए?
0: 25,000।
1: 25,000? इतने रुपए?
0: मुझे रुपया चाहिए।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे पास?
0: तुम मुझे यकीन दिला नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दिला सकता हूं।
1: कैसा सबूत?
0: यही कि तुम्हारे पास 5 रुपया है।
1: पूरन,
0: और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो चलो मेरे साथ।
1: कहां?
0: हनी राम के घर।
1: हनी राम? हाँ। आओ
0: आओ मेरे साथ।
2: अगर आप मुझे विलन के रोल में देखकर मुझे नफरत ना करें तो मैं कामयाब विलन नहीं बन सकता।
3: झूठ।

फिल्म बॉबी में मैंने एक छोटा सा रोल किया था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस डायलॉग की वजह से एक बार मैंने एक बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया। मैं डलहौजी से दिल्ली आ रहा था, रेल का सफर था, न जाने कैसे लोगों को पता लग गया कि एक स्टेशन पर जैसे गाड़ी रुकी तो हमारे डब्बे के आगे हजारों लोग जमा हो गए। गाड़ी चलती तो लोग जंजीर खींच कर रोक लेते, जब कोई दूसरा रास्ता ना देखा तो मैं डरते डरते दरवाजा खोलकर सामने आया। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें वो बॉबी का डायलॉग सुनाइए जो आपने उस पिक्चर में कहा था। खैर साहब, मैंने बड़ी मामूली तरीके से वो डायलॉग बोला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसा आपने फिल्म में बोला वैसे ही बोल के सुनाइएगा, तब हम गाड़ी को आगे चलने देंगे। मुझे वैसे ही डायलॉग बोलना पड़ा जैसा मैं पहले कहा कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई और हंसते हंसते हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने दिया।

दोस्तों, शिमला में बीता है प्रेम चोपड़ा का बचपन। ग्रेजुएशन उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से किया और आ गए बम्बई। उनके पिताजी उन्हें फिल्मों में भेजने के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि प्रेम डॉक्टर या इंजीनियर बने। पिताजी की मर्जी के खिलाफ प्रेम चोपड़ा चले आए अभिनय की दुनिया में। बतौर हीरो प्रेम चोपड़ा की शुरुआती फिल्म थी पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह, जो बड़ी मशहूर हुई थी। अपने शुरुआती दिनों में प्रेम चोपड़ा अंग्रेजी के एक जाने माने अखबार के सर्कुलेशन विभाग में नौकरी किया करते थे। वक्त निकालकर संघर्ष करते और अपनी तस्वीरें लेकर चल पड़ते निर्देशकों के दफ्तरों में काम मांगने के लिए।

0: से उधार ले लो मस्ती।
1: हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से पहले एक बार मैं किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग पर गया हुआ था। तीन चार बार जब वापस लौटा तो घर वालों ने बताया देवानंद साहब का कई बार फोन आ चुका है, वो बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। तो मैंने फोन से देव साहब को अपने वापस आने की इत्तला दी। उन्होंने कहा फौरन मिलो प्रेम, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त रोल है, कहानी सुनने के लिए 3 घंटे निकाल कर मेरे पास आना। मैं देव साहब के पास पहुंचा, मुझे देखते ही कहने लगे तुम खटमंडू के राजा हो, खटमंडू तुम्हारा है, खटमंडू तुम ले लो। जो कहानी देव साहब 3 घंटे में सुनाने वाले थे वो 3 लाइनों और 3 मिनट से भी कम वक्त में सुनाकर मुझसे माफी मांगकर चल दिए। मैं उनकी तरफ देखता ही रह गया।

जब प्रेम चोपड़ा ने खलनायकी की शुरू की तो दोस्तों ने बहुत समझाया पर उन्होंने एक न सुनी। उनके दोस्त उन्हें हीरो बनने की सलाह देते थे और प्रेम चोपड़ा थे कि किस्मत की लहर में खलनायकी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे।

0: मनोज कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को भाई साहब कहते हैं और जब भी मिलते हैं एक दूसरे के पांव छूने को झुकते हैं। हमें उम्र के मामले पर बहुत झगड़ा चलता रहता है। मैं कहता हूं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो, वो जिद करते नहीं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो। एक बार हम दोनों किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बीकानेर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, गांव के लोगों ने हमें घेर लिया। हर तरफ से आवाज आने लगी, मनोज कुमार मनोज कुमार मनोज कुमार। जब मैं गाड़ी से निकला तो मनोज ने पूछा, इन्हें पहचानते हो? आवाज आई, जी हाँ ये प्रेम चोपड़ा ही तो है, उपकार वाले, आपके बड़े भाई साहब। सुनते ही मनोज कुमार खूब हंसा और बोला, देखो प्रेम, मैंने पूरी 3 घंटे की फिल्म में तुम्हें अपना छोटा भाई कहा, मगर लोग तुम्हें मेरा बड़ा भाई कह रहे हैं। अब तो मान लो तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटे नहीं।
1: क्या? चले जाओ। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ।
2: और मैं कहता हूँ छोड़ दो प्रीति को।
1: जानते हो कि नहीं?
2: तुम चिंता मत करो बेटी, देखता हूँ पोता अपने दादा पर हाथ कैसे उठाता है। अरे
3: प्रेम चोपड़ा की संवाद अदायगी उनकी सबसे बड़ी खासियत है। चेहरे पे ऐसी चिकनी चुपड़ी नरमी होती है कि पूछिए मत, लेकिन नरम छुरी से जिगर को लहूलुहान कर देने वाली खलनायकी है प्रेम चोपड़ा की।
1: ये दुनिया को पश्चिम की देन है, इससे इंसान जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत जाता है। इधर आओ प्रीति, नहीं तो तुम्हारे भारत और भारत के गुरु दोनों को खत्म कर दूंगा।
4: अगर तुम मुझे पाने के लिए इन्हें मार सकते हो तो इन्हें बचाने के लिए मैं खुद मर सकती हूँ। चलाओ गोली।
2: तो मर जा बेटी।
4: नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं होगा। चलाओ गोली।
1: हट जाओ। तुम बार बार मेरे रास्ते में आते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरिओम।
0: फिल्म कीमत के सेट पर एक बार बड़ा मजा आया। इस फिल्म में एक बहुत बड़े गैंग का मैं बॉस बना। बड़ा खौफनाक गेटअप था मेरा। मेरे साथ हर सीन में चंद खौफनाक कुत्ते रहते थे। एक सीन था, मैं रोप से बैठा हुआ हूँ, मेरे चारों तरफ से मेरे चमचे पालतू कुत्तों को लिए बैठे हैं। सामने हीरो यानी धर्मेंद्र को लाया जाता है, उसे देखते ही मैं एक भयंकर कहका लगाता हूँ। एक तो मेरा खौफनाक चेहरा और उस पर ये भयंकर कहका, उन कुत्तों को अच्छा नहीं लगा शायद। और जो कुत्ते बैठे हुए बहुत छोटे से लग रहे थे, जब खड़े हुए तो उनका कद मुझसे भी ज्यादा बड़ा था। और सब ने एक साथ गुर्रा कर मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ लपके। बस फिर क्या था, मैं सब अकड़ और बॉसपन बिल्कुल भूल गया और चिल्लाना शुरू कर दिया और सेट पर एक बहुत जोरदार कहका गूंज उठा।

0: फिल्मी दुनिया में प्रेम चोपड़ा लंबे समय से मौजूद हैं और तरह तरह की खलनायकी की भूमिकाएं उन्होंने की हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम प्रेम चोपड़ा को बतौर चरित्र अभिनेता देख रहे हैं कुछ फिल्मों में। इन्हीं में से एक फिल्म थी उनके दोस्त राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया।
1: प्रेम चोपड़ा को फिल्म दो अनजाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उनकी सिल्वर जुबली फिल्मों में शामिल हैं दो जासूस, अर्जुन, स्वर्ग से सुंदर, दूल्हे राजा, फूल बने अंगारे, दाग, हुकूमत, पूरब और पश्चिम, उपकार, राजा जानी, आमने सामने, महबूबा, काला पत्थर वगैरह। फिल्म त्रिशूल का उनका किरदार तो आपको याद ही होगा। अमिताभ बच्चन के साथ प्रेम चोपड़ा फिल्म देश प्रेमी के इस गाने में थिरकते हुए नजर आए थे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता प्रेम चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर.
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन.
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास खिल उठता है। शायद यही प्रेम की परिभाषा है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का हर कोना महक उठना है।

सोए हुए गीत जाग गए, तन्हा दिल रोशन कर गया कोई प्यार की रोशनी से। ख्वाबों से भरी आंखों में कोई आया मिलने, जिंदगी के दर्द भरे नगमे होठ गुनगुनाया करते थे। पर एक रोज आईना देख होठ मुस्कुरा उठे, एक दूसरे से कुछ कहने सुनने की रुत आ गई। कहते सुनते जिंदगी के दर्दीले दिन कब बीत गए पता ही न चला।

वो आया तो ऐसा लगा धूप की तपिश में जैसे कोई छतनार पेड़ सामने आ गया हो। तपती धूप में वो छाया बन गया था, जैसे सुन ली गई हो विकल पुकार। पानी पर जैसे लिखा हो कोई खामोश अफसाना। वो दिल फरेब परदेसी आया, उसने प्यार के माला में आंसू की लड़ियां भी पिरो दी।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। निगाहें मिलती हैं, दिल के आंगन में फूल ही फूल खिल जाते हैं। वक्त हवा की तरह उड़ जाता है, हम नहीं रह जाते। दिल पर किसी और का कब्जा हो जाता है, लेकिन हवा से भी तेज रफ्तार वक्त के कैनवास पर एक आंधी चलती है और दिल के आंगन में खिले फूल मुरझा जाते हैं और दिल स्तब्ध वक्त के पीछे पीछे भागता है। और फिर एक टीस निकलती है दिल से और याद आता है ये नगमा।

अंधेरे में छिटपुट रोशनी सा आया था वो, दर्द के बादल में ठंडी झींसी सा सुकून देने लगा था उससे मिलना। उसकी आमद सन्नाटे में कोयल की कूक सा मधुर लगा था। जिंदगी की राह पर चलते चलते अचानक उसके रास्ते टेढ़ी पगडंडी की ओर मुड़ गए। उसकी सुखद आमद जादुई संसार में बदल गई, वक्त की सुई उल्टी चलने लगी।

रात के अंधेरे में वो खोलती है यादों की कोठरी, यादों का खजाना। खजाने में कुछ दर्द भरे नज़्म हैं, कुछ जल्द टूटने वाले खुशियों के मोती हैं, कुछ मोहब्बत के पैगाम हैं, कुछ चिट्ठियां जिनमें कुछ अल्फाज हैं

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन रंग तरंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना एल्बम चंदा की डोली से ये गाना, जिसे गाया सोनू निगम ने। गीत रचना नुसरत बदर की और संगीत सोनू निगम का। रंग तरंग कार्यक्रम में सुनिए अगला गाना।

मेड इन इंडिया एल्बम का ये गीत आपने सुना, आवाज अलीशा चिनॉय की, गीतकार अलीशा चिनॉय, बिद्दू श्याम अनुरागी और संगीत दिया बिद्दू ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला वो गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अगली आवाज चंदन दास की है। इनकी गजल आप सुनिए, शायर मुराद लखनवी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना दिल पड़ोसी है इस एल्बम का गीत आशा भोसले की आवाज में, गीत गुलजार का, संगीत आरडी बर्मन का। आइए सुने अगला गाना।

अभी आपने सुना पिया बसंती एल्बम का ये गाना, आवाज उस्ताद सुल्तान खान की और चित्रा की, संगीत संदेश शांडिल का। और सुनिए अब ये अगला गाना।

0: अभी आपने सुना तिकोन का चौथा कोण। छाया गांगुली की आवाज, छाया गांगुली की आवाज, गीत रचना महादेवी वर्मा की, संगीत जयदेव का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार, फिल्म अमीर गरीब,

0: विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम था कर्ज।

दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग रहिए, देश की सुरीली धड़कन भारत का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल।

0: बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों की महफिल, फिल्म का नाम डिस्को डांसर। अनजान के बोल बप्पी लहरी की तरह, पार्वती खान की आवाज।

शकीरा पन्ना फिल्म का गीत था और अब आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है पुकार, गीत गुलशन बाबरा का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। एक पूरे दौर की याद थी इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक इबारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और आज का जो टेक्स्ट है वो पोस्ट हो चुका है। अब सभी जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर आते हैं वो सभी उस टेक्स्ट से वाकिफ हैं, पर अपने उन श्रोताओं के लिए जो रेडियो सेट पर हमें सुन रहे हैं मैं ये टेक्स्ट पढ़ देता हूं। ये दो लोगों की बातचीत है। सोशल मीडिया पर कैसे 80s का दौर लौट आया ना, सब अपनी अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। तुमने बनाई अपनी फोटो? नहीं, मैंने 80s के गाने सुने।
1: अच्छा ऐसा?
0: हाँ ऐसा। क्या सुना बताओ तो जरा। अरे सीधा सीधा बताया तो क्या बताया, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, तुम भी उसी तरह से इशारे में जवाब देना। मंजूर? हाँ चलो हो जाए। अब लड़का कहता है हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाएंग। तुम हो बुद्धू जान लो, यू आर हैंडसम मान लो। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। अरे इस खेल में तो बड़ा मजा आ रहा है। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। वाह वाह नहले पे दहला, लगता है मेरा सहरा तैयार हो गया। ऐसा तो फूलों के शहर में हो घर अपना, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। बाग उजड़ गए खिलने से पहले, ओह इतना दर्द, हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे। ये कहां आ गए हम, कितना मजा आया ना इस खेल में। ऑफ कोर्स तो भाई ये है आज की इबारत, और जाहिर है कि इस इबारत के जरिए आपको अंदाजा लग गया है कि गाने कौन से हैं। पर इन गानों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम 80s के दौर को, उस दौर की जिंदगी को, उस दौर के जज्बात को याद करेंगे। तो भाई अपने मोबाइल फोन पर जाइए, फेसबुक पर पहुंचिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी जल्दी ये लिखना शुरू कीजिए कि 80s के दौर में आप कहां थे, आपकी क्या उम्र थी और उस दौर से जुड़ी हुई यादें कौन कौन सी हैं आपकी। इन गानों के जरिए हम सीधे 80s के दौर में पहुंच जाएंगे और बस ये समझ लीजिए कि उन सुनहरी यादों के गलियारों में से गुजरेंगे जब जिंदगी जिंदगी होती थी, जब मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम की रीले नहीं होती थी, जब जज्बात हुआ करते थे और जब यूं कहा जाता था आई लव यू। एटीज के दौर के कौन कौन से खेल आपको याद हैं जो आप अपने दोस्तों सहेलियों के साथ खेला करते थे, और इस गाने से जुड़ी कौन सी यादें हैं आपकी।

भाई कमाल का ये गाना और कमाल की 80s की यादें हैं। श्रोता लिखते हैं कि 79 में तो मेरा जन्म हुआ था, 80 के दशक में बच्चा था और उसके बाद उन्होंने 90s की कुछ फिल्मों को याद किया है। अर्ली 90s की करमाना की, नाराम लखन, प्यार झुकता नहीं एक दूजे के लिए, कभी 90s की सैर भी करेंगे इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तेरे बिन मर जाना कॉलेज में तहलका मचा दिया था इस गाने ने, किसी को प्रेम का इजहार करने या छेड़ने के लिए मनपसंद गाना था। एक और श्रोता है जो लिखती है कि उस दौर में स्कूल में पढ़ रही थी, तीन खेल तब बहुत लोकप्रिय थे, कबड्डी, खो खो और छुपम छुपाई। क्या याद दिलाया, छुपम छुपाई कितने लोगों को याद है। और छुपम छुपाई में ऐसी ऐसी जगह छिप जाते थे कि कहीं मकड़ी के जाले लग जाते थे तो कहीं कुछ हो जाता था, ये भी याद कीजिएगा। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। इस बीच में एक सुंदर खबर हमारे एक श्रोता ने भेजी है और कहते हैं कि भारत की लड़कियां आज गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल आएगा। बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि भारत और श्रीलंका की लड़कियों का मैच चल रहा है, T20 मैच, पहली बार बहुत सालों बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है एशियन गेम्स में। और भारत ने 20 ओवर में 216 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और श्रीलंका 7 विकेट उड़ चुके हैं, 11वां ओवर है, केवल 54 रन है। तो कुल मिलाकर ये संभावना जताई जा रही है कि आज भारत की लड़कियां जीत जाएंगी और भारत का एशियन गेम्स में इस बार का पहला गोल्ड मेडल हमारे पास आ जाएगा। तो जश्न मनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि अब बस 9 ओवर का खेल बाकी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे पहले ही ये खेल जो है खत्म हो जाएगा और भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत जाएंगी और जब तिरंगा लहराएगा तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ वापस लौटते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीला सफर सुनकर दोपहर की सारी थकान मिट जाती है, हम चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सिर्फ जीवन संगीत नहीं बल्कि एक एहसास है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम ओपिंगो बैटिंगो खेल खेला करते थे। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि खुद्दार फिल्म एक हफ्ते में 2 बार देखी थी, पहली बार 20 मिनट निकल चुकी थी इसलिए दूसरी बार फिर देखने के लिए गए थे, तब भी 20 मिनट, यानी शुरू की 20 मिनट इनकी हर बारी छूट गई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और बहुत सारे लड़के इस गाने को गुनगुनाया करते थे, रेडियो पर जब ये गाना बजता था तो बड़े चाव से सुना करते थे। एक और श्रोता है जो लिखती है कि वो कलकत्ता में थी, 27 साल की उम्र उस वक्त उनकी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 80 के दशक में नौकरी मिली थी और 80 के दशक में के अंत में शादी हो गई थी, पिछले 25 बरस उनकी उम्र थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। आज तो भाई 80 के दशक की सैर है सुरीला सफर कार्यक्रम में और जरा देखिए कि हम कहां पहुंच गए, किन यादों में। जब ये फिल्म आई थी सनी देओल और अमृता सिंह की अभिनय वाली, तो ये गाना जैसे सभी के होठों पर सज गया था। आपकी क्या यादें हैं इस दौर से जुड़ी हुई, जरा हमारे साथ बांटिए। न जाने कितने लोगों की प्रेम कहानियां परवान चढ़ी ये कहते हुए

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि छुपन छुपाई से एक बात याद आ गई। एक बार झाड़ियों में हम छिपे हुए थे। भाई ये कमेंट जो है ना नीचे की तरफ भाग जाते हैं, तो नुकीली टहनी से गहरा घाव लगा जिसकी निशान आज भी कोहनी में मौजूद है, एक श्रोता ने कहा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सनी देओल की हमने अर्जुन फिल्म देखी थी और उनके प्रशंसक बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई तब घर गृहस्थी में पूरी तरह से घिर गए थे, पर धर्मेंद्र के बेटे को देखने के लिए वक्त निकालकर फिल्म देखी थी। एक और श्रोता है जिनका जन्म 80 के दशक में नहीं हुआ था, लेकिन जन्म से पहले के ये गाने पसंद आए और पसंद हैं। विविध भारती कमाल है, आपके आने से सुरीला सफर और भी सुरीला हो जाता है, ये बात इन्होंने लिखी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 13 साल की उम्र थी, वो मौसम के हिसाब से खेला करते थे, जैसे बारिश में कंचे और गुल्ली डंडा और बारिश का मौसम थमते ही पतंग उड़ाना, ठंड में क्रिकेट खेलना, ये ऋतुओं के हिसाब से हमारे खेल थे। कितनी सुंदर बातें, कितनी सुंदर यानी देखिए रेडियो जो है, विविध भारती जो है सिर्फ आपको गाने नहीं सुनाता बल्कि आपके पुराने जज्बात, आपका नॉस्टैल्जिया, आपकी जिंदगी की पुरानी यादें, कितनी सारी चीजें एक साथ हम लेकर चलते हैं। एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि 80 का दशक, 80 के गानों का दौर, हमारे लिए तो 80 सब कुछ था। बच्चन साहब, खूबसूरत गाने, रेडियो सुनने का नशा, विविध भारती रेडियो, सीलोन, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, सब कुछ, और हमारे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 80 का दशक, बड़े बड़े फ्लैश लाइट वाले कैमरों से फोटो खिंचवाना, स्टूडियो में जाकर तरह तरह के पोज के साथ फोटो खींचना और उन्हें एल्बम में चिपका कर रखना, टेप रिकॉर्डर के लिए कैसेट लाना और विशेष गानों को की लिस्ट बनाकर कैसेट्स में उन गानों को डलवाना, क्या सुंदर याद है भाई। कितने सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये याद है कि वो पूरी लिस्ट लेकर जाते थे कैसेट वाले भैया के पास कि भाई ये गाने इसी क्रम में डाल दो, और कई बार वो उल्टे पुल्टे क्रम में डाल दिया करता था। ऐसी कोई याद हो तो बांटिएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है, मजेदार याद शेयर करते

लिखते हैं कि 81 की बात है जब हम हरदा से इटारसी एक दूजे के लिए फिल्म देखने के लिए पांच मित्रों के साथ पैसेंजर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। हम टिमरनी नामक स्टेशन पर पकड़े गए जो हरदा से 15 किलोमीटर दूर था। हमारे पास दो दो रुपए थे, वो तो छीन ही लिए गए, उल्टे 15 किलोमीटर दूर हरदा पैदल जाना पड़ा। आज ऐसी यादों को याद करते हुए हंसी आती है। और वो फिल्म जो है एक महीने बाद देखने को मिली थी। बड़ी ही मजेदार याद आपने शेयर की है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस दशक के गानों में सिर्फ गाने नहीं बल्कि वो रस हैं और इन गानों के बिना हमारी जिंदगी का रस अधूरा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर 80 के दशक की तस्वीरें AI के जरिए बना रहे हैं, लेकिन 80 के दशक के गीतों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर याद हमारे एक श्रोता ने शेयर की थी। वो उन्होंने कहा था कि 80 के दशक की तस्वीरें तो आप बना लेंगे, लेकिन उस दशक की सादगी कहां से लेकर आएंगे, वो सरलता, वो जीवन की सुगढ़ता, वो जीवन का सुकून कहां से लाएंगे जब संगीत में शोर कम और सुकून ज्यादा था, जब पुराना कोई दोस्त पीछे से कंधे पर हाथ रख देता था। ये गाने बस गाने नहीं है, बचपन की पहली साइकिल, पहली मोहब्बत की चिट्ठी, माँ के हाथ की चाय, वो शामें जो कभी लौट कर नहीं आएंगी, ये संगीत जो आज भी जिंदा है। क्या याद आता है 80 के दशक के नाम पर आपको, वो सुहानी यादें लिख दीजिए, बांट लीजिए आज हम सबसे, सारी दुनिया को बता दीजिए वो यादें। क्या इस गाने में इस गायक की आवाज आप जानते हैं? ये किसकी आवाज है जो नसीब इंसान का गा रहे हैं?

क्या बात है, कितने श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं, फिल्म कुर्बानी उस दशक का बेहतरीन गीत लैला में लैला और ड्रम्स की आवाज, सारा दिन इन्हीं यादों में डूबे रहेंगे। आज तो पता नहीं क्या क्या यादें याद आएंगी, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे बड़े भैया को फिल्में देखने का शौक था और जिगरी दोस्त सब मिलकर स्कूल बंक करके फिल्में देखने जाया करते थे। उस सिनेमा हॉल के मैनेजर पिताजी और ताऊजी के मित्र थे, इसलिए सारी पूल खुल जाया करती थी। आज भी भैया एक एक सीन, फिल्म का नाम और सारी चीजें याद करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तहलका मचा दिया था कुर्बानी फिल्म के गानों ने। इसके अलावा एक और श्रोता है जो याद कर रही हैं नाजिया हसन को, जिन्होंने कुर्बानी के गाने के जरिए धूम मचा दी थी। क्या वो ये था? और ये लिखती हैं कि इस गाने में बात बन जाए को बाप बन जाए गाकर हम सब बहुत हंसा करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत सारी चीजों को याद कर रहे हैं, इंदीवर का ये गाना। और इसके अलावा जो कैसेट रिकॉर्ड करने की बात थी उस पर तो बिल्कुल कितने सारे श्रोताओं ने अपने बात की है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में कैसेट रिकॉर्ड था, रिकॉर्डर था, सीडी से कैसेट रिकॉर्ड करते थे, कंप्यूटर में सीडी रिकॉर्डर भी था तो हम सीडी भी प्रिंट कर लिया करते थे, अपनी पसंद के गाने सीडी में तैयार कर लिया करते थे। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि कुर्बानी देखने के लिए मेरा भाई टिकट की लंबी लाइन में खड़ा रहा था और टिकट लेकर ही उसने दम लिया था। कॉलेज के दिन थे, मन उमंगों से भरा था, जीवन राग अनुराग से भरा था, 80 का दशक अब कहां। विविध भारती अपने गानों के माध्यम से वो दौर हमें याद दिलाता रहता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं और मेरे दो भाई टेप रिकॉर्डर लेकर एक दिन दिवाली के दिन गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ पटाखे की आवाज ही सुनाई दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा

कि कितनी गलतियां कैसेट भरने वाला कर दिया करता था, गलत गीत डाल दिया करता था, वापस जाते थे और उसके बाद उससे लड़ते थे। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने कैसेट भरने का काम किया, एक दो गीत हम अपनी तरफ से चिपका दिया करते थे जो हमें लिस्ट में नहीं मिला करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस जमाने में सिने पहली, 2003 में सिने पहली नाम का कार्यक्रम याद आ गया है हमें। इसके अलावा एक और श्रोता कैसेट भरने वाले की गड़बड़ियों को याद करते हैं, वो लिख रही हैं कि भाई जब कोई लिस्ट का गाना नहीं मिलता था तो महाशय अपनी पसंद का कोई गाना चिपका दिया करते थे और पूरी प्लेलिस्ट गड़बड़ हो जाया करती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी तो हम थिएटर के बाहर सिर्फ पोस्टर देखने के लिए जमा हो जाया करते थे और देखा करते थे। कितनी सारी यादें हमारे श्रोता बांट रहे हैं। अभी जब मैं अगले गाने की तरफ बढ़ रहा हूं उसके बाद और भी यादें कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में शामिल करें और इस कार्यक्रम के बाद तसल्ली से बैठकर इन यादों को हम पढ़ेंगे और ये भी रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और एक श्रोता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम सुन रहे हैं, 80 के दशक में स्टूडियो स्कूल खत्म किया था और पुणे की एक कंपनी में काम करना शुरू किया था, कुछ नए दोस्त बने थे और आज 45 साल बाद भी वो सभी दोस्त बने हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पहले लोग खेलने के लिए एक दूसरे का साथ ढूंढते थे, एक दूसरे के जज्बात की कदर किया करते थे, आज लोग एक दूसरे के जज्बात से खेला करते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई थी तो घर गृहस्थी में पूरे घिर चुके थे। इसके अलावा घर में कागज की चार चिट्ठियां बनाकर राजा मंत्री चोर सिपाही खेला करते थे 80 के दशक के, ये भी हमारे खेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। इस फिल्म ने कितनी धूम मचाई थी, कुमार गौरव, विजेता पंडित, क्या यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी। इस फिल्म के और कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं बताइएगा।

और शानदार खबर आ गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 147 रनों से जीत हासिल की है और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाइयां विविध भारती परिवार की ओर से।

क्या कमाल किया है भारत की लड़कियों ने। भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए आप यहाँ विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में भी संदेश दे सकते हैं। और देखिए, संदेशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे श्रोता, हरमनप्रीत कौर को बधाई, पूरी भारतीय टीम को बधाई। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि कुमार गौरव और विजेता पंडित पर ये गाना फिल्माया गया था और ये जोड़ी रातों रात स्टार बन गई थी। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है सनम। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये फिल्म मैं 3-4 बार देख चुकी हूं और कभी भी इस फिल्म को देखने से मन भरता नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि कम से कम 12 बार ये फिल्म देखी थी और 50 पैसे का टिकट हुआ करता था और हम जाया करते थे। एक श्रोता है जिन्होंने जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में एक लाइन है, कहां होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। ये लाइन बहुत पसंद है और हम सभी को इस लाइन पर अमल करना चाहिए। थिएटर में ये फिल्म नहीं देखी पर दूरदर्शन पर देखी थी। ये एक श्रोता की यादें हैं। बहुत सारे श्रोताओं की यादें। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में एक खुशी ये कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन गेम्स में, तो हम इस बात के लिए भी बहुत खुश हैं। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये आवाज जो हमारे जज्बात को जगा देती है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गाने के गीतकार कौन हैं?

आप तो ऐसे न थे फिल्म का ये गाना अनिता फाजली ने लिखा है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और सभी कह रहे हैं कि बेमिसाल शायर थे अनिता फाजली। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गाना मोहम्मद रफी, मनोहर उदास और हेमलता तीन अलग अलग आवाजों में इस गाने के वर्जन है। संगीतकार उषा खन्ना है ये भी। और इसके अलावा राजबब्बर पर फिल्म आया गया, दीपक पराशर और रंजीता ये भी श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन लौटते नहीं हैं, वो यादों के रूप में जीवन भर के लिए दर्ज हो जाते हैं। जब 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी हुई थी ना, तो मेरी एक सहेली ने ये गीत बड़ी मधुर आवाज में गाया था और हम में से बहुत सी सहेलियां इस गाने को सुनकर रो पड़ी थी। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं, गोरखपुर की जुबली टॉकीज में ये फिल्म देखी थी हमने, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में पुराने गीत चित्रहार और रंगोली में देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण वो अच्छे नहीं लगते थे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अमजद खान के रोल की तारीफ की है एक फिल्म में। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमने अपने जीवन साथी को कुछ ऐसा ही देखा, लगा हमारी जिंदगी होगी। पूरे गीत में जो एक लाइन है, ये तो बोलो कहां पे होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई, ये बहुत प्यारी लगती थी। शायद ये गाना हमने सबसे ज्यादा सुना है, इस गाने की बात हुई है। उसके अलावा बेताब फिल्म के एक गाने की बात एक श्रोता कर रहे हैं कि मेरा एक दोस्त इतना दीवाना हुआ था कि उसने एक पूरी कैसेट में यही गाना बार बार रिकॉर्ड कर लिया था, तो सारा दिन ये गाना सुना करता था। कितनी सारी यादें हमारे तमाम श्रोताओं की। लव स्टोरी में अमजद खान का एक डायलॉग है, लड़का लुड़का लड़की गायब, जब वो हथखड़ी रस्सी से हीरो हीरोइन को बांधे रहते हैं और पुलिस होते हैं, ये भी याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि तेरी याद आ रही है, ये गाना हमें बहुत ज्यादा पसंद था। लव स्टोरी फिल्म और क्रांति एक ही दिन देखी थी जब हम शादी की शॉपिंग के लिए जयपुर आए थे, ये हमारी एक और श्रोता की याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ, बल्कि दो गाने एक ही हीरो के। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि 80 के दौर का बचपन कितना प्यारा था, न मोबाइल न वीडियो गेम, फिर भी खेलने के लिए शाम छोटी पड़ जाती थी। गली में लुका छिपी, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे, रस्सी कूदना और कभी कागज की नाव बनाकर बारिश में बहा देना। हारने पर थोड़ी नाराजगी, जीतने पर शोर, कहा गया वो दौर।

भाई क्या शानदार गाना। मैंने कहा कि बैक टू बैक एक ही हीरो के गाने बजने वाले हैं, दो गाने। और एक श्रोता का बड़ी ही सुंदर कमेंट आया है जो बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं कि टॉकीज की साइकिल स्टैंड पर साइकिलों की भीड़ देखकर हम अंदाजा लगा लिया करते थे कि टॉकीज हाउसफुल है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि एक दूजे के लिए फिल्म मम्मी पापा के साथ देखने गए थे और हम बहुत रोए थे हम सब। और इसके अलावा फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार का बोला संवाद हम सबको याद है। ये हमारे एक श्रोता की बात है कि विजय ये मशवरा नहीं नसीहत समझना, इन लोगों की बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते में नहीं निकल जाना जहां चाहो भी तो वापस ना सको। क्या मुकाबला था शक्ति, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि टेलीविजन पर यह फिल्म देखी थी और चार बार ये फिल्म देख चुका हूं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारे श्रोता बधाई दे रहे हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एक और श्रोता लिख रहे हैं 80 के दशक को याद करने के लिए कोई AI की जरूरत नहीं है, ये साल कैसे भूल सकता हूं, यही महीना था घर में गणेश जी की स्थापना की थी और उधर पोस्टमैन रजिस्टर्ड लेटर लेकर हाजिर हुआ था जिसमें बैंक में नियुक्ति का पत्र था और 14 अक्टूबर 1980 को मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को प्रणाम, धन्य है हमारे देश की महिलाएं जो घर और खेल और हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ।

0: भाई ये गाना अभी खत्म हुआ, कितने सारे श्रोता हैं जो अलग अलग डायलॉग याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि शान फिल्म का डायलॉग, तुम तीनों मेरे खास आदमी हो, खरबंदा जी का ये अंदाज बहुत शानदार रहा था। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि खुदा गवाह, इंकलाब, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, लावारिस, आखिरी रास्ता, अमिताभ बच्चन की सब फिल्में देखी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, अंग्रेजी में चल सकता हूं, अंग्रेजी में हंस सकता हूं, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, ये बात एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कालिया फिल्म का डायलॉग, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो नमकलाल लावारिस, कुली, मर्द, शहंशाह, काला पत्थर, कालिया, नसीब, शराबी सभी फिल्मों को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्हें त्रिशूल और दीवार याद आ रही है, और दीवार याद आने पर यह होता है।
1: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।

0: आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
1: एक श्रोता ने बहुत ही कमाल की याद शेयर की है। कहते हैं कि 80 के दशक में मैं और मेरे मामा के बेटे लव स्टोरी देखने गए, जो हाउसफुल चल रही थी। अजमेर के एक थिएटर में इंटरवल के समय खड़े हो गए, जो बिजनेसमैन दर्शक व्यस्तता के कारण इंटरवल के पहले आधी फिल्म देखकर लौट रहे थे। उनसे टिकट लेकर आधी ही फिल्म हमने देख ली थी। क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की हमने कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन कमेंट्स के लिए। और इस कार्यक्रम में ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। क्या सनसनी थी जब सिलसिला फिल्म रिलीज हुई थी। कितना इंतजार था लोगों को। कितनी बार देखी है ये फिल्म और क्या याद है इससे जुड़ी हुई, जरा बताएं।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

और देखिए कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी मकाम पर हम आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की जोड़ी रेखा के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि भाई सबसे अच्छी जोड़ी अमिताभ बच्चन की परवीन बॉबी के साथ लगती है। किसी ने लिखा है नीतू सिंह के साथ लगती है, किसी ने लिखा है जीना तमान के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। पर अमिताभ की पसंदीदा फिल्में सिलसिला मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध और खून पसीना ये हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करने के इंतजार में थे लेकिन वक्त ने इजाजत ही नहीं दी और कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ आ गए। ये वो फिल्म है जिसने 80 के दशक में मचाई थी धूम। ये रेशमा का विकल स्वर, कौन थे इस फिल्म के संगीतकार ये बताइए। और इस फिल्म की हीरोइन कौन थी,

क्या बेमिसाल गाना और इस गाने की ये बांसुरी, कितने लोगों ने तो अपने मोबाइल में इसे रिंगटोन के रूप में रखा है। आज के इस कार्यक्रम का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हर कार्यक्रम को खत्म तो करना ही होता है ना अपने नियत समय पर। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया, 80 के दशक की सैर पर ले गए। जो यादें हैं उन्हें जिंदा रखिएगा, बांटते रहिएगा और अपने जीवन में जज्बात को घोले रखिएगा, क्योंकि जज्बात हैं तो हम हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, इजाजत दीजिए। नमस्कार।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। ममता जी आपसे एक सवाल कि आप अकेले अकेले कहाँ गई थी?
1: अरे जरा धीरे बोलिए, सब लोग सुन लेंगे, माइक भी ऑन है।
2: अरे तो बताना तो चाहिए ना सबको।
1: लेकिन हम नहीं बताना चाहते ना।
2: अरे क्यों नहीं बताना चाहते? इतने फायदे हैं उसके ममता जी।
1: नहीं नहीं नहीं बताना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं।
2: अच्छा।
1: लेकिन बस चलिए आपने अब खुलासा कर ही दिया। हाँ राज खुल गया है तो हम बता देते हैं सबको कि अमूमन यही होता है, हम कुछ बातें छुपाते हैं लोगों से और खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। भला खुद कहीं छुपा पाता है कोई बात? अब हम राज खोल देते हैं। दरअसल सोलो ट्रिप पर जाने की बात है। हम कई बार अकेले अकेले चले जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे अकेले जाने का प्लान बनाना मतलब ऐसे होता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और घर वाले तो जैसे बताओ कि सोलो ट्रिप पर जाने का प्लान है तो घर वाले एकदम भौचक्के रह जाते हैं। अरे
2: कैसे जाओगी,
1: कैसे जाओगी, ये परेशानी वो परेशानी, दुनिया भर की परेशानियों की फेहरिस्त। और अंदर अंदर उनको कुछ घबराहट भी होती है कि अभी अकेले अकेले पैर पसार रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बगावती हो जाएगी। तो ये जो महिलाओं के साथ होता है कि सोलो ट्रिप पर जाने की बात जैसी महिलाएं करती हैं वैसे ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी सोलो ट्रिप पर जाती हैं आजकल
2: और जा रही है, और खासकर युवाओं में ये बहुत चलन हो गया है और होना चाहिए। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है जब हम अपने पति के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ या घर वालों के साथ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि हम मोबाइल में या बातचीत में लगे रहते, पर
1: चक्र में लगे रहते हैं एक दूसरे के,
2: पर जब हम अकेले जाते हैं तब हम बहुत सजग हो जाते हैं, बहुत सचेत हो जाते हैं कि हमें कैसे टिकट खरीदना है, हमें कैसे ट्रेन पकड़नी है, कैसे फ्लाइट पकड़ना है, अगर बस से जाना है तो किस स्टॉप पे हमें उतरना है। इस तरह की कई कई सारी बातें हैं। अकेले जाना है तो किस तरह से हमें होटल बुक करना है, किस तरह से हमें खाने का बंदोबस्त करना है, और ये महिलाओं को बहुत अच्छा अनुभव देता है। हर महिला को ही सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। नहीं तो अमूमन हमने देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं जो रोजगार करती हैं, बाकायदा नौकरी पेशे वाली होती है, लेकिन वो भी जब कहीं घूमने जाती हैं तो देखा है कि पति पिता या भाइयों पर डिपेंडेंट रहती हैं। और जहां जहां गए कई बार तो घर वाले पूछते भी कि ये कौन सी जगह, तो पता चला उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता उसके बारे में, कभी खोज भी नहीं करती। जब आप अकेले घूमने के लिए जाती हैं तो पहले तो बहुत रिसर्च करती हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह है और उन जगहों का क्या इतिहास है, और उस इतिहास के बारे में जानना, इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और एक ये अलौकिक सा अनुभव होता है।
2: इस विषय पर हम बातें करेंगे। हमारे श्रोताओं ने अभी तक कमेंट नहीं लिखा है कोई भी, तो हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि जाना चाहिए या जाना है तो किस तरह से हमें सावधानी भी बरतना चाहिए।
1: और साथ में सुना लीजिए उन महिलाओं से भी कहेंगे कि जो सोलो ट्रिप पर जाना चाहती हैं लेकिन अब तक नहीं गई, उन पुरुषों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपनी टिप्पणी लिखे कि सोलो ट्रिप पर जाने का कैसा अनुभव रहा, अच्छा बुरा, और जो वहां पर आपने देखा क्या पाया जाना लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
2: जी साथ ही सखी विशेष में मल्लिका श्रीनिवासन जो चेयरमैन है टैफ ट्रैक्टर की, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है ममता जी, हल्की फुल्की बातें, इसमें आंटी मत कहो ना, जो हर महिलाओं को इसका थोड़ा सा दुख होता है कि अपने से जब छोटी उम्र के हमें आंटी कहते हैं तब दुख होता है। अगर बच्चों ने, कॉलेज के बच्चे हैं या फिर स्कूल के बच्चे, उन्होंने कह दिया तो कुछ नहीं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं और हमसे बहुत बड़े उम्र के जो भाई साहब होते हैं वो आंटी कहते हैं तो तब तो इतना दुख होता है कि
1: कई बार लोग अपनी उम्र को छुपाने के लिए, अपने को छोटा बनाने के लिए भी सामने वाले को आंटी कह देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े हैं। और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो ये बुरा तो लगता है। तो आपके साथ मतलब श्रोताओं के साथ क्या हुआ?
2: और श्रोताओं ने ममता जी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं इस विषय में।
1: अच्छा हाँ। तो भाई ये वाला विषय हमें लगता है उन्हें ज्यादा मन भाया क्या? हाँ। वो सोलो ट्रिप वाली बात

0: जची नहीं या उनका अनुभव नहीं है, होगा तो अनुभव शायद छुपा भी रहे होंगे,
1: शायद लिखेंगे
0: हाँ। और जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो तो अक्सर सोलो ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं, परिवार के साथ नहीं,
1: उन्हें
0: तो,
1: अच्छा लगता है कि
0: हाँ, हाँ। तो आप अपने बच्चों के अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और मुहावरों की दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है, तो आज का जो मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए, इस पर आप सबकी क्या राय है? और हमारी तो अब ये राय है कि हम सुनवाते गाना।

तो ममता जी, आज हम सखी विशेष में एक प्रेरणादायी महिला उद्यमी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो है महिला मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी उद्यमी है और टैफ ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और टैफ भारत के प्रमुख ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है। मल्लिका श्रीनिवासन

0: ने विमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से गणित में स्नातक किया, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से एमबीए किया
1: और उन्होंने 1980 के में अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ गई वे और जुड़ते हुए उन्होंने टैफ में काम शुरू किया और शुरुआत में उन्हें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल करना पड़ा क्योंकि कठिन था। उन्होंने किसानों की जरूरतों को

0: देने को अपनी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और उन्हीं के नेतृत्व में ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के कारोबार का विस्तार भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने ट्रैक्टर इंजन और ट्रांसमिशन कारोबार के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
1: और मल्लिका श्रीनिवासन को उद्योग और समाज में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिजनेस नेतृत्व और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। और उनकी रुचि केवल उद्योग तक सीमित नहीं है। टैफ के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी आपने काम किया।
0: मल्लिका श्रीनिवासन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कृषि जैसे पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, उसमें एक महिला का नेतृत्व, दूरदृष्टि और व्यावसायिक समझ ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और उनकी इस मामले में बहुत अहम भूमिका रही।
1: और ममता जी, वक्त हो चुका है ब्रेक का।
0: तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो सोनाली जी, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और मल्लिका श्रीनिवासन के बारे में हमने जानकारी दी अपनी सखियों और सखाओं को। अब क्या किया जाए,
1: एक गीत सुन लिया जाए।
0: सुनते हैं।

0: भाई आपने सोनाली जी हमसे तो पूछ लिया राज की बात कि सोलो ट्रिप पर आप कहाँ गई थी, लेकिन आपने अपना नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी सोलो ट्रिप पर पिछले दिन।
1: जी मैंने पढ़ा है, सुना है, और आपके बारे में भी पढ़ा है, और मैं भी सोच रही हूँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही।
0: बस यही तो बात है, हम सब हिम्मत नहीं कर पाते अकेले जाने की,
1: पर मन में बहुत इच्छा है।
0: हाँ, और होता क्या है कि आप अकेले जाते हैं तो आप वहाँ के अनुभव बटोर कर ले आते हैं, वहाँ की जानकारियाँ बटोर कर ले आते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं लिखते पढ़ते हैं। और हमने तो कई राइटर्स के बारे में पढ़ा है कि जो लिखने के लिए अकेले कहीं गए, जैसे मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है आपका बंटी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि वो पहाड़ों पर गई थी वो पूरा करने के लिए उपन्यास। तो जो लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे फिल्मी दुनिया में लोग हैं जो लिखते हैं, राइटर्स हैं, वो लोग कहीं चले जाते हैं, वहां लिखकर स्क्रिप्ट लिखकर लौटते हैं। तो इसमें हर्ज क्या है अकेले जाने में?
1: बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हर महिला को ये अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम परिवार के साथ जाते हैं तो ये जो खासकर महिलाएं उसी उलझनों में लगी होती है कि बच्चों को नहलाना है, उन्हें कपड़े चेंज करवाना है, उन्हें खाना खिलाना है, खाना खाते खाते भी पहले बच्चों को खिलाना है फिर खाना है। पर एक उम्र के बाद में जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, 40 के बाद महिलाओं को ये अनुभव जरूर लेना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव होता है कि बहुत कुछ हम सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात है ममता जी कि हम खुद के लिए जीते हैं।
0: बिल्कुल,
1: नहीं तो हर बार महिला ऐसा होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जीती है।
0: मन से आप प्रसन्न होती हैं। आपने कहा महिलाओं को जाना चाहिए, क्या पुरुषों को नहीं जाना चाहिए?
1: पुरुष तो जाते ही ममता जी।
0: बिल्कुल, महिलाएं अमूमन नहीं जाती, डरती रहती हैं, तो इसलिए जाना जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल यात्रा सोलो ट्रिप का बढ़ता चलन, भाई ऐसी यात्राएं तो हमारे यायावरता की निशानी है, और ये यात्राएं सुखद भी होती हैं क्योंकि इसमें पाथेय का बोझ अल्प ही रहता है, फिर यदि पद यात्रा पर है तो देशाटन का लुत्फ भी आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसी यात्राओं के बहुतेरे शौकीन है, बहुत सारे लोग तो सिर्फ अकेले जाना ही पसंद करते हैं, और अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो आप अपने घर से तो अकेली निकलती हैं,
1: वहां महिलाओं का ग्रुप मिल जाता है,
0: बाकायदा ग्रुप मिलता है तो वो साथ हो जाता है। लेकिन वहां पर ये जो परेशानियां आपने बताई ना कि कपड़े पहनाना है, खाना खिलाना है, वो झंझट नहीं होते हैं, तो आप उसको उस ट्रिप को बाकायदा एंजॉय कर सकते हैं।
1: यानी बच्चे भी आत्मनिर्भर बनते हैं और महिलाएं भी अपने लिए जीती हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक साथी ने कहा है कि एकल यात्रा बड़ा रोचक तथ्य मुद्दा है, हम तो

0: रेल से अकेले यात्रा करते थे। गोवा से पनवेल तक हमने यात्रा की है। हमारे घर वाले तो गांव खेड़ा का सफर करते हैं, उन्हें आके बताया जाता तो आश्चर्य हुआ उन्हें। हमारी दादी बुआ और नानी तो सफर में साथ नहीं देती, तो हमें तो रेल से मुंबई से सूरत तक एकल यात्रा करना पड़ा। बड़ा अच्छा लगा।
1: क्या बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है ये, इन्होंने लिखा है कि सोलो ट्रिप बेंगलोर हैदराबाद का किया हमने। इसमें मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। हमेशा सावधान सतर्क रहना पड़ता है। ऐसी जगह जहां लोगों की आवाजाही कम हो न जाएं, अच्छे होटल चुनें और जाएं जरूर। बिल्कुल, वो तो आपको अपनी सुरक्षा और सावधानी का ख्याल रखना ही चाहिए। वो तो आप जब जिस शहर में रह रही हैं वहां जब घर से निकलती हैं तो हमेशा सजगता तो आपको बरतनी ही पड़ती है।
0: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि मेरी बेटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उन्हें देश विदेश घूमना बहुत पसंद है। मेरे दामाद जी बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए जब छुट्टियां होती हैं तो हफ्ते में 10 दिन का प्रोग्राम बना लेती है और अकेले ही कुछ ऐसे ही सहेलियां मिलकर घूमने निकल लेती है। एक बेटी है जो 10वीं क्लास में है, उसके लिए हम लोगों को या फिर अपने सास ससुर को बुला लेती है। विदेशों में जाकर कार हायर करके अकेली ही निकल जाती है घूमने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी आपकी बात से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी कि देखिए ऐसे अकेले भी महिलाएं जा सकती है, हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और बड़े धैर्य के साथ हम सभी चीजों का अनुभव करते हैं
1: और आप निडर बनते हैं। हाँ। इसी बहाने एक श्रोता ने लिखा है कि मैं मात्र 16 बरस का था जब अकेला जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया था। सच मानिए मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे से माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये मेरे जीवन में एकल यात्रा का एक बेहतरीन अनुभव था। कई बार जब खास तौर से लड़कियां घर से निकलती हैं तो माता पिता का हाल बुरा होता है डर के मारे, यहां तक कि मान लीजिए ट्रेन से जा रही है तो परिवार के लोग उन्हें पहुंचाने आते हैं, छोड़ने आते हैं और ट्रेन में अगल बगल के लोगों को बाकायदा परिचय करेंगे, बताएंगे कि मेरी बेटी अकेली जा रही, जरा आप ख्याल रखना। इससे क्या होता है कि जो आपके अगल बगल बैठे उन्हें तो ठीक है, सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन बाकी जनता भी जान जाती है कि ये अकेली जा रही है, तो इससे खतरे और बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो अजनबी है आपकी कितनी मदद कर सकता है, बेहतर हो कि लड़कियों को इतनी मजबूत बनाए शुरू से, इतनी ताकतवर बनाए कि ये सब समझाने की नौबत ना आए। और अकेले यात्रा करने में कोई बुराई नहीं, ये हमारा ये कहना नहीं कि आप परिवार के साथ यात्रा करना बंद कर दें, लेकिन जरूरत पड़े तो आप जरूर जाएं और अकेले एक आध बार यात्रा करके उसका अनुभव भी लेना चाहिए। क्योंकि अब आगे समय आपका करियर का चुनाव किस तरह का है, कहां आपकी पोस्टिंग होने वाली है, कहां नौकरी करने जाने वाली है, तो इसलिए अकेले रहने की आदत, अकेले चलने की आदत बहुत जरूरी है। कई बिजनेस परिवार में हमने देखा है कि पति रात को 2-2, 2:30, 3 बजे तक आ रहे हैं और बेटी की शादी आपने कर दी है, बेटी सिर्फ खिड़की के सामने खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि पति आए फिर खाना खाए। तो ये जो बांध देना है एक दूसरे के साथ, उसको कहा जाता है कि खूंटे में बांध देना, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए।
0: हर रिश्ते में स्पेस जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: स्पेस होना चाहिए। एक हमारे साथी ने कहा ममता जी कि भले आज टेक्नोलॉजी बहुत एक्टिव हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूं कि अकेले नहीं जाना चाहिए, खासकर महिलाओं को, जहां तक कि नए कपल को भी अकेले नहीं जाना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है।
1: ये तो वही बात हो गई कि आप दिन रात डर डर के जी रहे हैं, फिर इसके मतलब इतना डर डर के कौन जीता है, फिर तो कहीं भी रिस्क है। आप घर से निकलते हैं तो आपका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा हादसा हो जाए, तो अपने मन को डर से मुक्त कीजिए और फिलहाल एक गाना सुनिए।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सखी सहेली और सोनाली जी, देखिए एकल ट्रिप की बात की हमने, सोलो ट्रिप की, तो बहुत सारे श्रोता जो असहमत थे सहमत हो गए हैं और इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अभी तक तो ज्यादातर सोलो ट्रिप ही की है, अपने मोबाइल से पहले से सब कुछ बुक कर लेता हूं, जब से घर से दूर पढ़ाई के लिए बाहर निकले तब से मेरी आदत बन चुकी है, कोई अनुभव नहीं साझा किया किसी ने।
1: एक साथ ही कहते कि मुझे पसंद नहीं है एकल ट्रिप, मुझे ग्रुप के साथ यात्रा करना सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। वहीं एक सखी ने लिखा है कि मैं एक बार एनसीसी के कैंप में जब 10th क्लास में थी तो स्कूल से गई थी, बहुत सारी स्कूल की सहेलियों का साथ था, माता पिता या बड़े भाई नहीं थे, बहुत अच्छा लगा, बशर्ते स्कूल की टीचर्स थी, पर बहुत मजा आया। तो उन्होंने 8-10 लड़कियों के साथ ही इतना आनंद उठाया, तो जब अकेले जाएंगे तो और भी आनंद मिलेगा। सबसे ज्यादा आनंद से ज्यादा ममता जी हम बहुत कुछ सीखते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, और महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना तो एक अच्छा अनुभव ही हो सकता है, लेकिन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता आपको देना चाहिए। यात्रा से पहले, गंतव्य तक पहुंचने से पहले वहां का मौसम, वहां के स्थानीय परिवहन के बारे में जानकारी हासिल कर ले, सुरक्षित क्षेत्रों की अच्छी जानकारी ले ले, वहीं पर जाएं। जहां पर सुरक्षा नहीं है वहां पर जाना, अकेले जाना तो ठीक नहीं है। हाँ, वहां जैसे सोलो ट्रिप पर निकलती है तो ग्रुप मिल जाता है
1: जी,
0: तो फिर कोई हर्ज नहीं।

0: है और होटल या रहने की जगह विश्वसनीय हो, अच्छी उसके बारे में रेटिंग अच्छी हो, ऐसी जगहों पर जाएं।
1: और सोलो ट्रिप केवल घूमने का अनुभव नहीं बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख देने वाली यात्रा भी हो सकती है। पहली सीख है कि आत्मनिर्भरता। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जो यात्रा होती है ना, उसमें चमक दमक के पीछे वास्तविक परिस्थितियां अलग हो सकती है। इसलिए केवल तस्वीरों से प्रभावित होकर यात्रा की योजना बनाने के बजाय वास्तविक जानकारी और अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
0: और ये भी कि जब आप अकेली जाती हैं तो पहुंचते ही सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर नहीं अपलोड करनी चाहिए, और ये कि हम मैं अकेली आई हूं वो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। और सोलो ट्रिप का मतलब ही परिवार या दोस्तों से दूरी बनाना नहीं होता है। कई बार ये केवल अपने लिए, स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालने का तरीका होता है, अपने लिए स्पेस निकालने का तरीका होता है, खुद से गुफ्तगू का तरीका होता है। क्योंकि अमूमन अपनी दिनचर्या में, भागदौड़ की जिंदगी में आप अपने भीतर कभी झांक के नहीं देखते, अपने से बात ही नहीं करते, आपके भीतर क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं और क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक बातें हैं, कुछ भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में जब आप खाली होते हैं, कुदरत के साथ होते हैं, कुदरत का सान्निध्य होता है, तो आपकी विचारशीलता बढ़ती है, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है और खुद को समझने की आदत बनती है
1: और एक डर दूर हो जाता है ना कि अरे हम तो जा ही नहीं सकते, जो हमारे खासकर महिलाओं के मन में डर है कि हम अकेले नहीं जा सकते। तो जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, बहुत सुंदर ये दुनिया है। विशेषकर महिलाओं के लिए ये यात्रा आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का अवसर बन जाती है, बशर्ते रोमांच के साथ सुरक्षा और समझदारी का संतुलन बना रहना चाहिए।
0: रोमांच बस वो जो होता है कि चले गए मोबाइल लेकर और सेल्फी खींचने, पता चला एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है और नीचे घाटी है, बस सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं, तो उनका ख्याल रखें। पानी में जब जाएं, किसी नदी या झरने के किनारे, तो इन बातों का ख्याल रखें क्योंकि वहां पर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बाकायदा सोलो ट्रिप पर चल सकते हैं। तो चले सोनाली जी, हम भी सोलो ट्रिप पर फिलहाल
1: दोनों मिलके सोलो ट्रिप
0: गाने के जरिए चलते हैं फिलहाल।

0: तो भाई सफर सुहाना हो यही हम उम्मीद करते हैं और सबके लिए यही शुभकामना करते हैं कि जो लोग भी सोलो ट्रिप की तैयारी कर रहे हो
1: उनका सफर उनके लिए सुहाना हो।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सोनाली जी, ममता जी, अकेले जाने की जो बात चल रही है, हर किसी को अकेले जाना चाहिए जिससे मन में मन का डर खत्म हो जाता है। फिर क्या क्या होता है, हम अभी 2-3 साल पहले वहां गए थे प्रयागराज, और जब मौनी अमावस्या पड़ी तो घर से अकेले ही निकले थे और उसी रात वहां पर हादसा हो गया, तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे और हमारा उसे उस समय उस टाइम पे फोन भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ हो चुका था। देखिये भाई, ये तो जब आप, ये हम नहीं कह रहे कि आप किसी हादसे के शिकार हो जाए, जब आप, ये तो खतरा कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो सोलो ट्रिप पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप ये इमेजिन करके जाएं कि कोई खतरा होने वाला है, हमेशा समूह में जाना अच्छा होता है।
1: उन्होंने आगे लिखा है कि 3-4 दिन तक उनका फोन बंद था और 3-4 दिनों बाद वे 500 किलोमीटर दूर गए थे, तब घर आए तो घर वालों ने राहत की सांस ली।
0: तो ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर अकेले जाएं, लेकिन कभी एक आध बार आपको अनुभव तो लेना चाहिए अकेले जाने का भी, कि परिवार की वजह से आप घर से निकलना ही बंद कर दे। ये है यहाँ पर मकसद सोलो ट्रिप का।
1: और सोलो ट्रिप पे अगर आप गए और वहां पर आप किसी ने आंटी कह दिया तो कैसा लगेगा ममता जी?
0: प्यार से सिर पे हाथ रखेंगे और कहेंगे हाँ जो खुश रहो, यही आशीर्वाद दे देना चाहिए जो लोग आंटी कह के इस तरह छोटे बनना चाहते हैं, यही तरीका है। और कुछ लोग बुरा मान जाते हैं और कि वहां पर कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है कि अरे मुझे आंटी कैसे कहा, ये देखो
1: मेरे बाल इतने काले हैं, मेरे इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मुझे आपको मैं कहां से आंटी लग रही हूँ।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी कहो वाला सेगमेंट तो बहुत मजेदार है, मेरी एक छात्रा की बातें है कह रही थी। वो बोली कि मैम कल हम लोग फिल्म के टिकट के लिए लाइन में खड़ी थी और एक हम उम्र लड़का आकर बोला आंटी जी 2 टिकट हमारे लिए भी ले लीजिए ना प्लीज। मैं बोली अंकल जी आप लाइन में खड़े हो जाइए, टिकट मिल जाएगा। हंस पड़े थे लोग। तो ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि छोटी छोटी लड़कियां हैं और उनसे आप आंटी कह रहे हैं।
1: एक साथी ने कहा है कि बड़ा ही रोचक मुद्दा है, आंटी तो उम्र दराज महिला को कहते हैं। हमारे मोहल्ले का तालाब अजमेर में घाघरा लुगड़ी पहनने वाली औरतें कुछ बच्चे आंटी कहने के पुकारते हैं, उन्हें यही कहा जाता है। हमारी माँ तो उन्हें आंटी कहने से मना करती है, उन्होंने कहा कि मौसी या भाभी जी कहने को कहो, भाभी जी हमसे जमता नहीं, जो बड़ी औरतें हैं आपस में कहना भला। इन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारी मम्मी ने भी मना करके रखा है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रहने वाला तो बुंदेलखंड का हूँ और वहां पर आंटी शब्द का जो उदाहरण है वो अचूक है, जगह जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है, लेकिन हाँ मैं ग्वालियर में राजमिस्त्री का काम करता हूँ, जो हमारी श्रीमती जी हैं वो भी हमारे साथ लेबर का कार्य करते हैं, इत्तेफाक से अगर किसी ने उनको आंटी बोल दिया तो लड़ाई हो जाती है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वो 40 साल की हो चुकी है लेकिन आंटी किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहती। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप छोटों से भी आंटी शब्द नहीं कहलवाना चाहते। एक छोटी सी टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि आंटी शब्द कोई अपने से छोटा बोल दे तो अच्छा भी लगता है, पर कई बार बराबरी और बड़े बोल दे तो कभी हम उनको देखते हैं कभी अपने आप को देखते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है आंटी शब्द से तो न जाने कितने ही मजाकिया किससे खुद से और दूसरों से जुड़े हैं। एक बार प्राइवेट बस के कंडक्टर ने मुझे कहा आंटी थोड़ा सा आगे हो जाओ, मैंने कहा मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ, मैंने कहा तुम लोगों ने 2 ही शब्द सीखे अंकल और आंटी, तो बेचारा यूं ही आगे निकल गया, बस किराया भी नहीं लिया। 15-20 साल पहले की बात है, अब तो कोई बोल दे तो चलता है।
0: जी बिल्कुल।
1: एक साखी ने लिखा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आंटी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में चाची, मामी, बुआ, फूफी, ताई, इन सबको आंटी ही कहा जाता है। आंटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई काफी उम्र का

0: हो चुका है। मामी, बुआ, फूफी, ताई, चाची किसी भी उम्र की हो सकती है, हाँ, मगर आंटी शब्द का चलन फैशन इस कदर बढ़ गया है कि अपने उम्र से कम उम्र के लोगों को भी लोग आंटी कहकर पुकारने लगते हैं। फिर भी अगर कोई जाने अनजाने कोई किसी को आंटी कह दे तो उसे बिल्कुल भी दिल से ना लगाए, उल्टा आंटी कहकर पुकारने वालों का हंस कर मुस्कुरा कर स्वागत करे, ना कि बुरा माने।
1: कुछ इसी तरह की बात इन्होंने भी लिखी है कि आजकल किसी नई उम्र की लड़की को कोई बोल देता है तो बहुत ही बवाल हो जा रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि आंटी मतलब सिर्फ चाची ही नहीं होता, मौसी बुआ भी तो होता है। तो मान लो कि तुम उसकी मौसी हो, बुआ हो, और बुद्ध क्या उम्र ना होते हुए भी, मतलब छोटी उम्र ना होते हुए भी कुछ सामाजिक चलन है जिसमें अपने से छोटे को बड़ा समझदार कह दिया जाता है। गांव में आज भी आपसे बड़े उम्र के लोग भी माता जी कहते हैं, संबोधन देते हैं। माता जी कहने का मतलब ये नहीं कि हम उम्र दराज हो गए, हमें वहां माँ के समान इज्जत दे रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों पर तो छोटी बहन को भी दीदी कहा जाता है, और कुछ शहरों में जो स्कूल हैं, कुछ स्कूल में भी, विद्यालय में भी छोटों को दीदी भैया कहा जाता है, मतलब चाहे वो लड़के बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको भैया और दीदी कहा जाता है।
0: वही दीदी, ताई, भैया कहे, इस तरह से कहे ना तो बुरा नहीं लगता, पर एकदम से सडनली कोई आंटी बोल दे तो फिर थोड़ा सा महिलाओं को बुरा लगता।
1: भाभी कहने में भी कोई बुरा नहीं मानता है, जबकि कई बार बहुत बड़े उम्र के लोग आपको भाभी कहते हैं तो वो अच्छा लगता है, फिर आंटी कहने में क्यों बुरा लगता है।
0: एक साथी ने लिखा है कि अगर वयस्क महिला को आंटी बोल दिया जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अभी से उम्र दराज दिखने का या महसूस करने का एक प्रयास जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब बुरा लगता है। उनके मुकाबले उसी उम्र के पुरुष को अगर अंकल कहा जाता है तब उसे जरा भी बुरा नहीं लगता। इस बारे में क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, अब ये हमारे श्रोताओं के विचार हैं और हम तो बस आनंदित हो रहे हैं आपकी टिप्पणियां पढ़ पढ़ के। एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी मत कहो, सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे लेकिन इसमें उम्र और रिश्तों को लेकर हमारी सोच छिपी है। किसी को केवल उम्र के आधार पर संबोधित करने की बजाय उसके नाम या सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करना अधिक सहज लगता है। शब्दों में अपनापन और सम्मान हो तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, इसीलिए संबोधन वही अच्छा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति सहज और सम्मानित महसूस करे।
0: एक साथी ने कहा है, मुझे भी ऐतराज है, कोई हमारा हम उम्र का भी हमें आंटी कहने लगे। हाँ, हम आंटी उम्र के हो गए हैं, पर टीनेजर्स के ना कि अंकल आंटी वाले उम्र के लोग हमें कहें।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता किसी महिला को आंटी कह देने से इतना बुरा क्यों लग जाता है। आखिर ये तो उम्र और रिश्ते के लिहाज से संबोधन का एक सामान्य शब्द है, पर शायद जब किसी महिला को आंटी कहा जाता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे उम्र दराज समझ रहा है। तो उम्र को छुपाने से बेहतर है उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि खूबसूरती उम्र में नहीं व्यक्तित्व और व्यवहार में बसती है। भाई, ये बात तो पुरुषों के लिए भी लागू होती है ना, कि कई बार पुरुषों को जब अंकल कह दिया जाता है बहुत कम उम्र के लोगों को, तो वो भी तो ये ऐतराज करते हैं,
0: अंकल कहा दिख रहा है।
1: और खास तौर से जब आप पत्नी की सहेलियां जब आती हैं और वो अंकल कह देती हैं,
0: तो
1: कहते नजर आते हैं लोग कि अरे तुम्हारी सहेलियां तो हमें अंकल कहती हैं। तो बात तो वही हो गई। अब आज विषय आंटी का रखा गया, अगली बार अंकल वाला शब्द रख दिया जाएगा। फिलहाल एक गाना सुनवा दें।

0: अब ये आंटी न कहो के बारे में तो भाई बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारी एक सखी लिख रही है कि बेंगलोर में सभी महिलाओं को अम्मा कहा जाता है। मैं जब पहली बार वहां गई तो हर ऑटो वाला कोई दुकानदार अम्मा कह देता था, बड़ा बुरा लगता था।
1: एक साथी कहते कि मेरी लेडीज कलर की शॉप है, मैं भी कभी किसी को आंटी कहता हूं तो उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आंटी का अर्थ चाची, काकी, बुआ जी, मामी, यही तो होता है ना।
0: बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या होता है सोनाली जी, कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस रिश्ते से कहा जा रहा है। मैं भी जब मुंबई नई नई आई थी तो एक बार सब्जी खरीदने गई और वहां पर सब्जी वालियों ने मुझे कहा कि ताई, मराठी में बोला ताई हे गया, तो मैंने कहा अरे, तब मुझे बिल्कुल मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, तो ताई बोला तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि मैं ताई ताई मतलब तो क्या होता है, बड़ी माँ। हम उत्तर प्रदेश या एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में ताई मतलब
1: चाची
0: मतलब बड़ी माँ, एक तरह से मतलब जो चाची है,
1: माँ की जेठानी।
0: हाँ, माँ की जेठानी हुई। तो मैं सोच रही थी कि ताई किस रिश्ते से कहा, और बड़ी दिखने का सवाल तो बाद में आया, पहले ये लगा कि किस रिश्ते से ताई कह रही है। तो एक ने कहा, दो ने, फिर दो तीन बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने एक बार पूछा, मतलब मुझे भी बुरा लगा, हमने कहा ये ताई किस रिश्ते से कह रही है, मेरा आपका क्या नाता है। तो उसने बताया ताई मतलब दीदी। तो दीदी भी एक तरह से मतलब छोटी थी, मैं तो बहुत छोटी थी जब आई थी, तो उस समय ये अजीब सा लगता है, बुरा लगने की बात तो बाद में आती रिश्ते। तो ये जो अम्मा वाली बात है।

0: कि किसी ने कोई सीधे आपको अम्मा जी कह दे तो कैसा लगेगा। तो सोच समझ के कहना भी चाहिए। और लेकिन हाँ, जहाँ का चलन है वहाँ का आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ के बारे में जानकारी ले लें, बस यही होता है।
1: एक हमारे साथी ने कहा कि भाई मुझे कोई लोग अंकल कह देते तो मुझे बुरा नहीं लगता है।
0: एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल मैं सफर में रोडवेज में जाता हूँ तो कंडक्टर मुझे कभी कभी अंकल कह देते हैं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ, पर फिर सोचता हूँ कि उम्र भी अब इस तरह की हो गई है। तो फिर हमारे एक पड़ोसी, एक अगले श्रोता ने लिखा है, हमारी सखी है, हमारी एक पड़ोसी है जो अपनी पत्नी को मजाक में आंटी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले ट्रेन में एक सज्जन ने मुझे माताजी कहकर संबोधित किया, मैं अवाक रह गई, मुझसे उम्र में बड़ा था, आज ये बात याद आ गई मुझे। ये तो मेरी वाली बात कि जो सब्जी वालियों ने कहा था वो सब हमसे बहुत उम्र में 2 गुना 3 गुना उम्र की रही होंगी, और उन्होंने मुझे ताई कहा था और मैं एकदम से परेशान हो गई कि ताई किस रिश्ते से कहा।
1: वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को आंटी कहता हूँ। तो इसमें तो ये कहावत हुई ना कि घर का भेदी लंका डाए। कि एक ये जो हमने मुहावरा लिया है इसमें आज का मुहावरा है घर का भेदी लंका डाए। इसका अर्थ घर का कोई सदस्य घर के राज दूसरों को बता देता है तो घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते कि दीवारों के भी कान होते हैं, इस तरह समझाया करते थे, पर आजकल हर सभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद अपने घर के भेद किसी को बताते नहीं है, खुद दूसरों के भेद जानने में लगे रहते हैं।
0: अब तो एक गूगल नाम का जो प्राणी है आपकी सारा आप सारे भेद खोल देता है। तो इसलिए आपको बहुत सजग रहना चाहिए। कई बार आपने गूगल से एक आध बार कोई एक चीज सर्च कर ली तो बार बार बार बार उसी के मैसेज आते हैं, वही चीज आपको, वही ब्रांड, वही चीज, वही वस्तु दिखाई दे।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी हमारे मन का भी जान लेता है।
0: बिल्कुल,
1: मन में कभी सोचा है तो उसी के आने लगती है।
0: क्योंकि जब हम कोई विमर्श कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस बीच कभी भी आपने मोबाइल यूज किया तो वो बात तो चली जाती है,
1: शब्द पकड़ लिया तो उसी के आती। एक और
0: कई बार अलेक्सा अगर आपके घर में है और आपने कोई शब्द ऐसे बोला और मुंह से अ ल निकला एक साथ तो अलेक्सा तुरंत बोल पड़ती है। तो ये जो हो गया है ना कि अब टेक्नोलॉजी के साथ घर का भेदी लंका ढाए वाला मुहावरा अब इस तरह से भी बदल गया है कि आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है घर का भेदी लंका ढाए बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है और इस दृष्टिकोण से केवल विभीषण के चरित्र को भलीभांति याद किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप फिर रावण का वध हो गया। भाई अजब तेरी दुनिया, गजब तेरी कारीगरी रे सरकार, जो समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति ही मिल जाया करती है।
0: अब एक गाना सुने
1: सुनते हैं।

0: नया दौर फिल्म का ये गाना था। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ना प्रिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।
1: Yeah.

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया गए रंगू, पिया है महासतैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारत।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: तराने नए पुराने।